ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज सुबह 9:10 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान, 9:20 पर सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 9:40 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात मातृ एवं शिशु की देखभाल विषय पर डॉक्टर राहुल भूतरा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। गाने पुराने जमाने के ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकेंगे गाने नए तराने नए। शाम दोपहर 4:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी और 5:30 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। शाम 6:20 पर होगा माटी के स्वर कार्यक्रम और शाम 7:00 किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। 7:30 से आप सुन सकेंगे ICC विमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। तो श्रोताओं ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वीं ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में, सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। सुबह 7:00 से शुरू हुआ मतदान शाम 6:00 तक चलेगा। इस दौरान 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस चरण में 4,474 वार्डों के लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 87,60,000 से अधिक मतदाता, 18,200 से ज्यादा उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 54,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहां चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग मतदाता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
2: शहर के विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का आना लगातार जारी है। कहीं मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी है तो कहीं इलाकों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाला और नागरिकों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
1: पाली नगर निगम के लिए भी आज चुनाव हो रहा है। चुनावी माहौल का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।

0: दूसरे चरण में पाली, बाली, खुडाला, फालना, सादड़ी, तखतगढ़ और सुमेरपुर में मतदान किया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में युवा, महिला, पुरुषों सहित हर वर्ग में उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई है। बूथों पर कहीं प्रवासी तो कहीं मॉर्निंग वॉक कर मतदाता मतदान कर रहे हैं। नगर निगम पाली के 65 वार्डों में 167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और निष्पक्ष रूप से अपने शहर की सरकार के चयन में भागीदारी निभाने की अपील की।
2: सारे जिलों में जो भी नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं, वहां पर शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का उपयोग करें। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मतदान स्थल पर और मतदान स्थल के बाहर भी जो है पुलिस प्रबंध किया गया है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो वोटर हेल्प डेस्क पर भी जो है आपकी मदद के लिए सन्नद्ध हैं। तो मेरा यही आपसे अपील है कि अपने मताधिकार के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का जो है निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
1: राज्य के 309 नगर निकायों में मतदान के बाद वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। वहीं अध्यक्ष पद का चुनाव 21 सितंबर को किया जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत मंडपम में होने वाले दो दिन के इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस बीच आज नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आयोजित किया जा रहा है। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापारी मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता ही पशुओं में लंपी रोग के बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ये बात जयपुर में लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और नियंत्रण उपायों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और अब तक 87% से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में लंपी रोग से 10,403 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 6,905 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को टीकाकरण तेज करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संक्रमित पशुओं को अलग रखने के निर्देश दिए। इधर सवाईमाधोपुर में आज पशुओं में बांझपन की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले के 4 ब्लॉक्स में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में गाय और भैंस सहित अन्य मवेशियों में बांझपन की जांच कर उपचार किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविरों का लाभ उठाने की बात कही है। राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार करेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रवर्तन, आसूचना, सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण, नशे की मांग और हानि को कम करने तथा क्षमता निर्माण पर समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अफीम, डोडा पोस्त और एमडी जैसे मादक पदार्थों की जब्ती में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अब तक करीब 730 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है और 93 ड्रग

0: किंग पिन गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 12 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति शिविरों और जागरूकता गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला कल से शुरू होगा। मेले में भाग लेने के लिए पदयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं के सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से शेरपुर तिराहे तक का किराया 10 रुपये रखा गया है।
1: रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले का रंग जमने लगा है। प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध के अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री रखने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के बाद रोडवेज की बसों में या श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं रेलवे की ओर से भी मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: इधर जैसलमेर में रामदेवरा मेले के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। मुख्य मेला 13 सितंबर को भरेगा। वहीं बाड़मेर के सेड़वा इलाके में आज से गुरु जम्बेश्वर मेला आयोजित किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में लगी राजस्थान की पोषण स्टॉल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और स्टॉल की सराहना की है। वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान की ओर से सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान थीम पर ये स्टॉल लगाई गई थी। इसमें मातृत्व पोषण के कैश प्लस मॉडल के साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत दूध, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रिकिट और शाला पूर्व शिक्षा के नवाचार को प्रदर्शित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वां ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में। सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले अल्ताफ रजा की गाई ये भक्ति रचना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज की ये भक्ति रचना।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: लीजिए श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सुनिए मकबूल साबरी और साथियों के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात मातृ और शिशु की देखभाल विषय पर डॉक्टर राहुल भूतड़ा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल भूतड़ा, जो कि भूतड़ा हेल्थ केयर सेंटर नागौर में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे प्रसव पूर्व एवं प्रसव के उपरांत ध्यान देने योग्य बातें और माँ और शिशु की देखभाल किस प्रकार से की जाए उस बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, माँ बनना एक स्त्री के जीवन का बहुत ही, हम कहें कि, आनंददायक और सुखद अनुभव होता है।
2: जी सर।
1: एक स्त्री कई रूपों में परिवार की, समाज की, देश की सेवा करती है, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो, लेकिन जो सबसे सुंदर उसका रूप माना गया है और जो विलक्षण उसको कहें अनुभव जो उसको होता है, उसकी अनुभूति होती है, वो है माँ बनने पर। तो ये जो माँ बनने का एक अनुभव किसी स्त्री को होता है, उसके लिए जब वो सबसे पहले कोई स्त्री कंसीव करती है, गर्भावस्था को धारण करती है, वहाँ से लेकर या उससे भी पूर्व से लेकर, और फिर वो जब माँ बन जाती है तो शिशु को जन्म देती है, उस शिशु की देखभाल के साथ उसकी स्वयं की देखभाल तक बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि वो स्त्री, उसके परिवार के लोग सब उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो जो आपका माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रह सकेंगे और एक अच्छे, मतलब हम कहें कि, अनुभव से वो गुजरें। तो बताएं आप थोड़ा सा कि प्रसव पूर्व की अगर हम बात करें तो प्रसव पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
2: जनरली आज के टाइम में जब कपल्स प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी होती है, आप प्लान करने से पहले, जैसे फोलिक एसिड का टैबलेट है, फोलिक एसिड टैबलेट आप प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 मंथ बिफोर एंड 2 मंथ आफ्टर कंटिन्यू करें तो बच्चों में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे मेनिंगो माइलोसील, एनेंसेफली जिसमें बच्चे का सर नहीं बनना, बच्चे का ब्रेन का अंडर डेवलप रहना, तो ये चीज़ काफ़ी प्रिवेंटेबल है, अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फोलिक एसिड सप्लीमेंट से। और इन केस प्रेगनेंसी अनप्लान प्रेगनेंसी है तब अपन इनिशियल 3 मंथ में फोलिक एसिड टैबलेट अपन कंटिन्यू करें। शुरू के 3 मंथ्स में अपन आयरन और मल्टीविटामिन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है शुरू के 3 मंथ में। जब एक बार वो वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग सेटल हो तब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स अपन आयरन एंड मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं। तो अपन प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले अपने को 6 वीक्स पे अराउंड अल्ट्रासाउंड कराना होता है, वो बच्चे की एक्टिविटी देखने के लिए और बच्चे की पोजीशन क्या है उसको पता करने के लिए। उसके बाद अपन जो 10 to 12 वीक्स है उसके अराउंड एक स्कैन होता है, वो अपने को बच्चे की नेजल बोन असेस करने के लिए देखना जाता है कि भाई कोई उसमें बच्चे में विकृतियां तो डेवलप नहीं हो रही है, क्रोमोसोमल या अनुवांशिक कुछ बीमारियां तो नहीं हो रही है। तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे नेजल बोन थिकनेस असेस करते हैं अपन, NIPT

0: मार्कर्स होते हैं, बीटा एसीजी का लेवल असेस करते हैं, उनके बेसिस पे अपन कुछ आनुवंशिक बीमारियां उनको अपन पकड़ सकते हैं, ताकि अपन उनका जो कुछ डायग्नोस्टिक वर्कअप है उनका अपन कर सकें और प्रेगनेंसी से पहले अपन प्रिपेयर रहें। और उसके बाद अपन चलते हैं 20 to 22 weeks पे, थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें अपने को अनोमली स्कैन कहते हैं। अनोमली स्कैन का मतलब हुआ कि बच्चे के सारी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हुए या नहीं हुए, अगर उनमें कुछ डिफेक्ट्स हैं तो अपन प्रेगनेंसी से पहले उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, कई बच्चों में किडनीज की प्रॉब्लम होती है, तो सही तरीके से प्रॉपर बने नहीं बने, तो आप अगर ये अनोमली स्कैन करा लेते हैं तो अपने को प्रेगनेंसी अपन डिलीवरीज करवाते हैं तो उस समय अपने को पता रहता है कि भी इसको इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से मैनेज करना है, तो अपने लिए थोड़ा ईजी हो जाता है।
1: जी डॉक्टर सर, ये तो बात हुई कि अगर कोई विकृति हो बच्चे में या उसका बच्चे का विकास ठीक से हो नहीं रहा, तो उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट आपने बताए हैं, और ये तीनों आपने अल्ट्रासाउंड टेस्ट ही बताए हैं,
0: हाँ,
1: सोनोग्राफी जो,
0: हाँ, ब्लड टेस्ट भी,
1: जी ब्लड टेस्ट और इसके साथ जो भी टेस्ट होते हैं, तो लेकिन हम साधारण भाषा में अगर बात करें कि एक महिला जो गांव की भी हो सकती है, पढ़ी लिखी भी हो सकती है, बिना पढ़ी लिखी भी हो सकती है, तो और उसके जो घर वाले हैं वो घर में, अब आज के समय में तो हम ये मान के चलते हैं कि घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा ही, तो वो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, चाहे वो स्त्री स्वयं हो या उसका पति हो या उसके घर वाले हों, तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे कि जैसे आपको ये पता लगे कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं, जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का उससे पता लग जाता है, तो पहले दिन से ही अगर हम केयर की बात करें, घर वालों को किस प्रकार का केयर करनी चाहिए, स्त्री को स्वयं को क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो हम चिकित्सकीय सलाह की बात करें कि समय समय पर कितने समय में उसको डॉक्टर से सलाह और उसको टेस्ट कराते रहना चाहिए।
0: इसमें सबसे पहले तो घर वालों का पॉजिटिव सपोर्ट एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में जब प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तब माँ को कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होना, डिहाइड्रेशन होना, तो वो थोड़ा माँ के लिए एक नया अनुभव होता है, तो उसमें घर वालों का और फैमिलीज का बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, और एजुकेटेड फैमिलीज हैं तो वो अच्छे से और अच्छे से इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद जनरली अपन एटलीस्ट कहते हैं कि भी 4 एंटीनेटल विजिट तो आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब 4 डॉक्टर विजिट तो आपकी होनी चाहिए, ताकि आप जो भी, जैसे एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी, एक सेकंड ट्राइमेस्टर में होगी, एक थर्ड ट्राइमेस्टर में, एक प्रेगनेंसी से, ताकि उस समय में अगर बच्चे का वजन प्रॉपर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, उसमें कुछ विकृतियां या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, ताकि अपन समय रहते उनको एड्रेस कर सकें, और जब अपन डिलीवरी करवाने जाएँ तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, तो उसके लिए ये 4 एंटीनेटल विजिट बहुत ज़रूरी है।
1: जी तो ये तो होगी चिकित्सकीय बात, इसके अलावा हम आम जीवन में आहार विहार की बात करें, तो जो आपकी डिलीवरी है वो स्मूथ हो, मतलब ज़्यादा वो जटिल नहीं हो, पेनफुल नहीं हो, कम से कम मतलब कष्ट से वो जो है आपकी डिलीवरी हो, उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी थी, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, तो जो आहार विहार की हम बात करें, खान पान की बात करें, उसको लेकर भी आप जानकारी दें।
0: हाँ, फर्स्ट टाइम मिस्टर अपने को बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड्स नहीं खाना, क्योंकि उसमें बॉडी में मेसिस ग्रेविडेरम होता है
1: जी, तो इसको थोड़ा हम और सरल भाषा में समझे, कितने महीने तक की बात हम कहेंगे,
0: फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी को अपन 9 महीने में डिवाइड, 9 महीने की प्रेगनेंसी,
1: 3 महीने के तीन
0: ट्राइमेस्टर्स होते हैं,
1: पहले 3 महीने की बात,
0: पहले 3 महीने की अपन बात करते हैं, तो पहले 3 महीने में अपने को बहुत सिंपल और नेचुरल फूड लेना है और स्ट्रेस फ्री रहना है, सबसे जरूरी चीज है, और दूसरी चीज है अपने को हाइड्रेशन मेंटेन करना, अगर आपका हाइड्रेशन अफेक्टेड होगा तो बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी, और आपको जो बच्चे के जो फिटल मूवमेंट है या जो भी बच्चे की एक्टिविटीज़ है वो आपको परसीव नहीं हो पाएगी, तो सबसे पहले अपने को डाइट कंट्रोल अच्छा करना, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, बाहर का फूड कम से कम रखना है, और दूसरा जैसे घर में कोई क्रोनिक इलनेस वाले जो मरीज हैं या कोई भी हैं तो थोड़ा उनसे अपने को दूर रखना, ताकि बच्चे में कई बार ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं कुछ, तो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: जी तो जैसे आपने बताया कि अच्छी डाइट लेनी है और डिहाइड्रेशन नहीं हो,
0: मेन डिएट
1: हाइड्रेट रखना है, तो वो उसके लिए मतलब क्या क्या
0: हाइड्रेशन के रखने के लिए आप खूब सारा, तो अपना जितना पानी पीते हैं उसे डबल पानी पीजिए, फ्रूट्स में आप नारियल पानी ले सकते हैं, तरह तरह के जूस ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, और होल ग्रेन मतलब बाजरा है, अनाज की दलिया है, खिचड़ी, इस टाइप चीज़ें दे सकते हैं, कई कई बार कभी कभार बाहर खाने का मन होता है तो कभी कभार आप खा सकते हैं, पर रेगुलर डाइट में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट अच्छी लीजिए, प्रोटीन में जैसे पनीर है, राजमा है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से ले सकते हैं ताकि आपका बिल्डअप, इम्यून सिस्टम अच्छा बिल्डअप हो और अच्छा बॉडी बच्चा वेट गेन असेस कर पाए।
1: शारीरिक क्रियाएं या व्यायाम की अगर बात करें तो,
0: व्यायाम की बात करें तो अपने को जैसे अपन डिलीवरीज के लास्ट ट्राइमेस्टर में बात करें तब अपने को योगा या तरह तरह के व्यायाम है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पेल्विक मसल एक्सरसाइज होती है वो अपने को स्टार्ट करनी है ताकि अपना पेल्विक फ्लोर है मसल से वो मजबूत होए और डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी के टाइम वो अच्छा ओपन अप हो सके ताकि डिलीवरी स्मूथली होने, तो अदरवाइज अपने को बहुत प्रेशर और पेनफुल डिलीवरी होती है
1: जी। लेकिन भारी व्यायाम ना करें, बहुत भारी वजन उठाना वगैरह,
0: बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी जिम टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हल्का व्यायाम जो आपको भी कंफर्टेबल लगे और आपकी पेल्विक मसल्स को मजबूत करें उस टाइप का आप व्यायाम कीजिए
1: जी। अब डॉक्टर साहब, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, शिशु का जन्म हो गया और डिलीवरी हो गई, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो जैसे भी, तो अब उसके बाद जो देखभाल की बात शुरू होती है, अब उसमें दोनों हो गई, माँ और शिशु दोनों की, तो जब तक हॉस्पिटल में रहते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन तब तक डॉक्टर्स की वो गहन निगरानी में रहते हैं माँ और शिशु, लेकिन उसके बाद जब घर आ जाते हैं हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तब वहाँ से फिर दूसरी तरह की केयर शुरू हो जाती है, तो घर वालों को खुद को माँ को ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी और शिशु का, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए।
0: सबसे पहले सर अपन स्टार्ट करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ नोटिस किया है सर, जनरली क्या होता है माँ और बच्चे में थोड़ा बॉन्डिंग गैप रहता है कि जैसे सीजरियन डिलीवरीज हुई तो माँ अलग रहते हैं, बच्चा थोड़ा दादी नानी के पास रहता है, तो उसमें मदर और बच्चे की बॉन्डिंग नहीं होती, तो लैक्टेशन जितना जल्दी स्टार्ट होना चाहिए उतना जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाता, और इनिशियल टू डेज में जो अपना हल्का येलोइश मिल्क आता है वो भी बच्चे की इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरा तो सबसे पहले ये कहना कि आप माँ और बच्चे की प्रेगनेंसी की लैक्टेशन को बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाएं, माँ और बच्चे के,
1: माँ और बच्चों को आप साथ में दें ताकि उसको दूध जल्दी उतरे माँ का, माँ बच्चे को माँ का पहला दूध होता है जैसे खीस भी बोलते हैं, पीला गाढ़ा दूध जो होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है बच्चे के लिए
0: जी सर
1: जी। जबकि कई लोगों को ये, जैसे पुराने लोग हैं कई बार कहते थे कि नहीं पहला दूध तो निकालो बेकार होता है, थोड़ा साफ होने दो,
0: नहीं सर उसमें बहुत सारे तरह के एंटीबॉडीज होती हैं और लाइसोफेरिन लैक्टोफेरिन होते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में साथ में तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सराउंडिंग्स में ज़रूरी होता है, तो वो बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है, आप उसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे तो अपना माँ और बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, मदर भी स्ट्रेस फ्री रहेगी तो मदर की भी रिकवरी फास्ट होगी उससे
1: जी। तो यानी कि माँ का दूध तो बच्चे के लिए अमृत है ही, लेकिन जो पहला दूध होता है जो कि पीला गाढ़ा दूध जिसे आप बताया खीस बोलते हैं, तो वो तो जरूर जरूर बच्चे को पिलाना है,
0: जरूर सर,
1: उसको किसी भी तरह से फेंकना नहीं,
0: डिस्कार्ड नहीं करना।
1: अच्छा, इसके अलावा और जब बच्चे की देखभाल की जैसे बात होती है, मान लो सर्दी में डिलीवरी होती है या गर्मी में डिलीवरी होती है या बरसात के, तीनों मौसम की अगर हम बात करें तो हमें किस प्रकार से रहन सहन और खान पान का ध्यान,
0: जनरली हम बच्चों में तीन चार चीज़ों का सबसे ज़रूरी ध्यान रखते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तापमान, तो जैसे मान लो कि गर्मी में अगर बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है तो उसको ओवर क्लोथिंग नहीं करें, कई बार क्या होता है अपन शर्ट भी बना दें ऊपर से कवर कर दें तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो बच्चा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, और सर्दी में डिलीवरी है तो हम थ्री लेयर्स क्लोथिंग कहते हैं, नीचे आप कुछ भी पहना दीजिए उसके ऊपर शर्ट और उसके ऊपर आप स्वेटर्स या ऊनी कपड़ा और हैंड एंड शोल्डर जो आप नेक है वो सब कवर करके रखिए, तो सबसे बच्चों में जो ज़रूरी चीज़ है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस है, तो टेम्परेचर आपका सही रहेगा तो बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा और फीडिंग भी वगैरह सब चीज़ अच्छे से लेगी। दूसरी चीज़ है एयरवेज, एयरवेज का मतलब होता है कि बच्चे की पोजिशनिंग, आप बच्चा अच्छे से ब्रीदिंग ले रहा नहीं ले रहा, तो बच्चे की गर्दन ऐसे अपन बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाके आगे ले जाके नहीं रखें, बच्चे की नेक को कंट्रोल करके रखें पोजिशन में। दूसरा होता है ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग का मतलब हो गया कि बच्चा नॉर्मल जो 40 से 60 बार सांस ले रहा है उससे ज़्यादा सांस ले रहा है या बहुत कम सांस ले रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो अपने को घर जाने पर ध्यान रखने होते हैं, जनरली हम कहते हैं अगर दिन में आपका बच्चा हर दो घंटे में फीड ले रहा है, फीड लेने के बाद डेढ़ दो घंटे सो रहा है, दिन में 6-8 बार पेशाब कर रहा है, रात में 3-4 बार पेशाब कर रहा है, लगातार उल्टियाँ नहीं कर रहा है और कुछ सांस लेने में टसक नहीं रहा या खड्डे नहीं पड़ रहे या कुछ अबनॉर्मल या ताण वगैरह नहीं आ रही तो आपका बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, अच्छे से वेट गेन कर रहा है। अगर इनमें से कुछ भी आपको अबनॉर्मल लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन चीज़ों को एड्रेस करें।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने बताया, अगर सर्दी के टाइम में डिलीवरी हुई है तो सर्दी से बचाने के लिए सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं और बिल्कुल पैक कर देते हैं महिला को, बच्चे को, और जैसे कि आपने बताया कि वो इवन सांस लेने में भी उनको दिक्कत होती है, बच्चे को भी हो सकता है, कि क्लोथिंग जो आपने बताया अच्छे से करके उसके अलावा फिर उस पर रजाई वगैरह डाल के इतना पैक कर देते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती
0: है। नहीं, उसको और क्लोथिंग नहीं करना है, अपने को 3 लेयर क्लोथिंग रखनी है, बच्चे को ऊपर डालना नहीं है, बच्चे को कपड़े पहनाने हैं अपने को
1: जी,
0: नीचे कुछ भी अंडरगारमेंट्स जो अभी आप पहनाते हैं, उसके बाद शर्ट्स हैं, शर्ट्स के ऊपर आपका ऊनी जो भी स्वेटर है या जो भी पहनाते हैं वो पहनाइए, आपका हेड कवर किए, आपके पाँव कवर किए, वो आप अच्छे से कवर करके रखें, बाकी ऊपर से आपको और क्लोथिंग डालने की जरूरत।
1: और साथ में ये ध्यान रखें सर्दी में हो चाहे गर्मी कभी भी, लेकिन कि वो बच्चा अगर पेशाब कर देता है तो उसको टाइम से टाइम वो बदलते रहे, चेंज करते रहे,
0: जी जी सर,
1: ताकि गीले में नहीं रहे।
0: गीले में नहीं रहे, गीले में क्या है कि आप मान लो कि आप जैसे गर्मी में आप एसी वगैरह कुछ चला रहे हैं तो उस टेम्परेचर में वो उसको ठंड पकड़ने की रिस्क रहती है, तो बहुत लंबे टाइम तक अगर कांटेक्ट में रहेगा तो परेशानी होगी बच्चे में।
1: तो गर्मियों में एसी भी मतलब बहुत ध्यान से चलाएं, और
0: गर्मी में एसी चलाने का तरीका सर ऐसा है कि जैसे आप चलाएं तो एक ही टेम्परेचर पे चलाएं, जैसे आप कभी 18 पे चला रहे हैं कभी 30 पे चला रहे हैं तो वो बच्चे के लिए सूटेबल नहीं, कभी ठंडा कभी गर्म नहीं कर सकते, आप 28 या 27 डिग्री पे चला सकते हैं। साथ में एसी की डायरेक्शन है वो बच्चे के सिर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप जब चला रहे हैं तो उसके हाथ और पाँव कवर अच्छे से होने चाहिए, कई बार क्या होता है कि बॉडी बॉडी के बाकी पार्ट्स कवर होते हैं,
1: हाथ पाँव
0: ठंडे
1: पड़ जाते हैं डायरेक्ट, अगर आपका एसी की हवा उसके लग रही है तो
0: आप उनका ध्यान रखें। और सर्दी में जैसे आप मान लो कि हीटर चला रहे हैं तो हीटर के पास आप जनरली ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी एक पानी का मग भर के या कुछ भी भर के रखें, तो कि जो सर्दी में जो हवा हीटर की वजह से सूखी हो जाती है, सूखी होने की वजह से बच्चे को इरिटेबल और नाक ब्लॉक होने की समस्या बढ़ जाती है, तो आप उसको रखेंगे तो हवा मॉइस्चराइज रहेगी तो बच्चे को कंफर्टेबल रहेगी,
1: मतलब हवा में थोड़ी नमी होना भी जरूरी।
0: इसके
1: अलावा बात एक आती है जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ उसको मिथ कहे हैं हम, कि खान पान की, कि जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए एक विशेष खान पान तैयार किया जाता है, बहुत ही गरिष्ठ और बहुत ही घी और चिकनाई युक्त, कई तरह के लड्डू, कई तरह की जड़ी बूटियाँ और कई तरह के उसको हलवा वगैरह करके और ऐसा गरिष्ठ खाना खिलाया जाता है कि भाई नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है कि महिला चूँकि आराम भी करती है जो भी महीने 2 महीना, तो वो लेटी रहती है, काम भी नहीं करना होता है, फिर साथ में उसको जब इस तरह का चिकनाई युक्त और बहुत ही गरिष्ठ भोजन कराया जाता है, तो उससे क्या उसको फायदा होता है या नहीं होता है, या किस तरह का भोजन होना चाहिए जो महिला है जो कि माँ बन चुकी है उसके बारे में भी थोड़ा हमें
0: पूरा। एक्चुअली आज से अपन थोड़ा टाइम पहले चलते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिस में थी, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है तो अब प्रैक्टिस भी ये लोग चेंज करने लगे हैं, अब उतना हैवी फूड्स वगैरह मदर को अब नहीं दिया जाता है आज के टाइम में। जनरली ऐसा होता है कि जैसे आप पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी फेज में जा रहे होते हैं तो आपको बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट भी लेना है, आपको प्रोटीन डाइट भी लेना है और आपको फैटी डाइट भी लेना है। अगर बैलेंस डाइट आपका प्रोपोर्शन में है तो आपको एक्स्ट्रा डाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और सबसे दूसरी ज़रूरी चीज़ है अपने आपको हाइड्रेट करना, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो आपका मिल्क आउटपुट अच्छा होगा, मिल्क आउटपुट अच्छा होगा तो बच्चे की वेट गेन भी होगा और आपका स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आपका यूट्रस का जो प्रेगनेंसी वाले फेज था उसे प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जाने में आपको डेवलप हेल्प करेगा वो
1: जी। इसके अलावा जैसे कि फ्रूट्स और जूस की अगर हम बात करें तो वो ले सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी बताएं जो घर में होती हैं जो कि हम माँ को उस समय दें।
0: जनरली हम ऐसा कहते हैं कि आप जूस के बजाय आप कच्चे फ्रूट्स खाइए, जूस में थोड़ा सा जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना कंपेरेटिवली बेनिफिट नहीं मिल पाता और जल्दी यूटिलाइज हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैलोरी शो उसको मदर को जल्दी मिलनी चाहिए उतना शॉर्ट टर्म के लिए मिल पाती, लॉन्ग टर्म के नहीं मिलती, तो आप तरह तरह के फ्रूट्स जितने भी तरह के फ्रूट्स आते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। साथ में आप प्रोटीन डाइट्स में आप जैसे पनीर है, मखाने हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस टाइप की हल्का हल्का कभी आप मीट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
1: दूध की अगर हम बात करें,
0: दूध तो मदर जितना अच्छा लगी उतना अच्छा बच्चे के लिए डेवलपमेंट, मिल्क आउटपुट अच्छा डेवलप होगा। मेन अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आप चाहे इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स रखें, चाहे दूध के फॉर्म में रखें, पानी के फॉर्म में रखें, और कैलोरी आप जितनी आप बच्चे को दे रहे हैं उतना आप कैलोरी इंटेक बराबर उतना लेते रहें
1: जी। इसके अलावा अब हम बात करें यदि कुछ मिथ्स की, कुछ जो भ्रांतियाँ कहें या आप ही बताएंगे कि वो भ्रांतियाँ हैं या क्या है, तो कई चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों को काजल लगाया जाता है कि भाई बच्चे की टीका हम लगा देते हैं काजल का, आंख में काजल लगा देते हैं कि इससे आंखें बड़ी होंगी, बच्चे की जो नाक है और जो हम कहें कि सिर है उसके बीच में उसको नाक को उठाने के लिए दबाया जाता है, कई बार बच्चे का जो सिर है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए, गोल रहे उसके लिए भी कुछ जतन किए जाते हैं, तो क्या जतन तो सही है और क्या जतन गलत है?
0: जैसे आपने जैसे पूछा कि बच्चों में काजल डालते हैं, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बच्चों में काजल नहीं डालना चाहिए। बच्चों की आँख की साइज़, कलर, वो सब उसके माँ बाप के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। काजल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काजल से आप उल्टा उसकी आँखों में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांसेस और बढ़ा देते हैं। जैसे कहीं नाक खींचना, ये भी इससे कोई नाक की हड्डी नहीं बढ़ती है। और कई बच्चों में जैसे डिलीवरी के टाइम में सर पे स्वेलिंग रहती है, तो उसको आप दबाने से स्वेलिंग नहीं रिड्यूस होती, वो अपने आप ही ठीक होती है। कई माता जी या घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे को शहद देते हैं या जन्म गुटी देते हैं, तो इनिशियली 6 मंथ में अपने को वो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उसमें क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, तो उससे हाथों में बच्चों में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है और गैंग्रीन से डेवलप होने का रिस्क रहता है। कई माता जी ऐसे होती हैं, कई या घर में मालिश करने वाले आते हैं, जो बच्चे के निप्पल्स को खींचते हैं ताकि उससे जो मिल्क है वो निकालते रहें, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा करने से बच्चों में वो मिल्क जो बड्स हैं वो डेवलप हो जाएगी और मिल्क वॉल्यूम जो है वो बनने लगेगा और मिल्क वहीं इकट्ठा होकर उनमें रस्सी बनने का रिस्क रहेगा, एप्सिस बनने का रिस्क रहेगा। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। दूसरे कान नाक में कभी भी तेल नहीं डालें, वो अननेसेसरी है। कई मैंने फैमिलीज में देखा है कि बच्चे को उठा के वो ऐसे गोदी में लेके जंप कराते हैं, तो वो भी आपको नहीं कराना है, उससे कि बच्चे की हाथ खींचने का या एल्बो जॉइंट वगैरह डिसलोकेट होने के रिस्क रहती है।
1: जी, मतलब बच्चे को प्यार करें लेकिन वो ऐसा प्यार ना हो जो उसके लिए भविष्य में खतरा और उसके लिए नुकसानदायक। तो जो बच्चों को हवा में हम उछालते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है।
0: हाँ, उसमें इंजरी, स्पाइनल इंजरी की रिस्क रहती है, बच्चे का एल्बो या शोल्डर डिसलोकेट होने का रिस्क रहता है।
1: तो इसके अलावा उसके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं उस पर भी उसका असर पड़ता है, मस्तिष्क होता है उस पर भी बुरा असर,
0: क्योंकि जो ब्रेन होता है वो अपना ऑलमोस्ट 2 ईयर तक 90% डेवलप होता है। तो आप जो स्कल का शेप है, ये सब चीजें वो अपन कितना स्मूथ केयरिंग पेरेंटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
1: जी, अगर बच्चे की, शिशु की खान पान की बात करें तो कितने महीने तक उसको केवल माँ का दूध देना
0: initially,
1: है, उसके बाद फिर क्या देना है?
0: इनिशियली हम 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं।
1: एक बूंद पानी भी देने की जरूरत नहीं?
0: माँ के दूध में 85% पानी होता है, वो बच्चे के रिकवरी, उसका हाइड्रेशन उसको मेंटेन कर लेता है। अपन अलग से पानी क्यों नहीं देना, इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि अगर आप जितना दे रहे हैं उतना वो माँ के, उस बच्चे के लिए सफिशिएंट है। अनेक बच्चे की किडनी क्या होती है, इनिशियल 6 मंथ तक इमेच्योर होती है, तो जो पानी में सोडियम होता है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाती, तो किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती। इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि सोडियम का लेवल अपने बॉडी में कम होना स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से दिमाग में कई बार स्वेलिंग आ जाती है और बच्चे चिड़चिड़ा होना, कई बार तान आना ऐसे स्टार्ट हो जाता है। आपको इनिशियली 6 मंथ तक माँ के दूध के अलावा नहीं पिला। इन केस अगर किसी कारणवश माँ का दूध नहीं आ पा रहा है या कोई भी मेडिकल रीज़न है, तब आप फॉर्मूला फीड दे सकते हैं, गाय का दूध, बफेलो मिल्क वगैरह, कोई से भी किसी तरह का चाय, कुछ भी नहीं देना।
1: या फिर दूध अगर जरूरत पड़े, जैसे आप बता रहे हैं कि मगर दूध नहीं उतर रहा माँ का किसी वजह से और पानी हमें देना पड़ा, तो पानी को उबाल कर फिर ठंडा करके फिर पी दे?
0: नहीं, पानी तो अपने को देना ही नहीं है। इनिशियली सिक्स मंथ में बिल्कुल भी नहीं देना। आप जो मदर मिल्क दे रहे हैं या जो आप फॉर्मूला फीड कर रहे हैं वो इसकी सफिशियंट है, उसके हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। अपने को अलग से नींद नहीं की बहुत गर्मी हो रही है, अपन 1-2 बूंद पानी पिला दें, कोई जरूरत नहीं है। माँ के दूध और फॉर्मूला फीड सब प्रॉपर कवर कर लेते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, कोई इस संबंध में जो है माँ की और शिशु की देखभाल के संबंध में अगर आप कोई बात और बताना चाहें,
0: मेरा सबसे मेन
1: भी आप कहना चाहते हैं माताओं बहनों से, सबसे
0: माताओं बहनों से मेरे सबसे यही कह रही है कि आप जब डिलीवरीज होती है तो बच्चे को माँ के पास रखें, ताकि माँ और बच्चा साथ में रहेंगे तो माँ का भी स्ट्रेस कम होगा और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग उतना अच्छा होगा, और जितना जल्दी लैक्टेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा अपने को टॉप फीड या फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। और मदर मिल्क जितना बच्चे के लिए अच्छा होता है उसका कोई सा भी दूध अच्छा ना, तो उसमें इतने तरीके पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में,
1: माँ के दूध को बच्चे का संपूर्ण आहार माना गया।
0: माना जी सर।
1: तो उसके अलावा फिर कुछ 6 महीने तक,
0: तो अगर आप जैसे 3rd, 4th day पे आप फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं तो आपका लैक्टेशन डिले होता है और उतना वॉल्यूम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो आप घर वाला पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, मदर को सपोर्ट करें। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको समझ में नहीं आता, तो आप कैसे उनको, बच्चे को कैसे पोजिशनिंग होनी चाहिए, कैसे उनको सिखाएं अच्छे से। और आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब लैक्टेशनल काउंसलर होते हैं, तो वो वहाँ अच्छे से प्रॉपर केयर करते हैं, आप उनको एड्रेस करिए, वो आपको पूरी केयर बताएंगे।
1: बिल्कुल। और कोई भी जो बात आप, जैसे आपने बताया, अगर हमें लगता है तो आप अपने जो शिशु रोग विशेषज्ञ उनको दिखाएं, उनसे सलाह लें और उनके निर्देशों का पालन करें।
0: हाँ, जैसे अपन प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर बोलते हैं, वैसे अपन एक 4th ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, इनिशियल 100 डेज के, जो बर्थ के 100 डेज हैं, अगर उसमें आपने अच्छे से केयर कर ली तो आपके बच्चे में आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अपने को पहले तो फर्स्ट मंथ पे तो अपने को उसका न्यूट्रिशन मतलब फीडिंग कैसा है, उसका वैक्सीनेशन कैसा है, ठंडा गर्म हुआ है या उसका टेम्परेचर को मेंटेनेंस करना है। फिर अपन जैसे थर्ड मंथ पे जाते हैं तो उसका डेवलपमेंट असेस करना है अपने को कि बच्चा 1.5 महीने पे माँ को देख के मुस्कुरा रहा नहीं मुस्कुरा रहा, 3 मंथ पे नेक होल्डिंग आ रही नहीं आ रही उसकी, बच्चा ऐसे कोइंग कर रहा नहीं कर रहा,
1: जो उसकी उम्र के और उसकी माइलस्टोन जो उसके लक्षण हैं जो उसकी क्रिया है वो
0: होनी। कई जनरली ऐसा होता है, कई बच्चे हमारे पास आते हैं 8-9 महीने पे आते हैं, उनको ये पता नहीं लगता कि हमारा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, एक्टिविटीज़ नहीं कर

0: हो, तो ये सब चीज़ें अगर हम टाइमली एड्रेस करें तो उतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बजाय पीछे अपन ने एड्रेस करें तो।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के उपरांत जो भी बातें हमारी माता बहनों को और उनके परिवार के लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आशा करते हैं कि इस जानकारी से उन्हें बहुत लाभ होगा। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात मातृ और शिशु की देखभाल विषय पर डॉक्टर राहुल भूतड़ा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। ये बातचीत आकाशवाणी नागौर से प्रसारित की गई।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, और यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमासोनी का प्यार भरा नमस्कार। जी हां श्रोताओं, अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहे हैं मोहम्मद रफी फिल्म मेरे हुजूर में। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म पतिता का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी को फिल्म 16 साल में। इस गीत को संगीत दिया है SD बर्मन ने और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

Chabba! Chabba!

लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम में फिल्म मेरे महबूब का ये गाना, जो कि है इस फिल्म का शीर्षक गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है नौशाद ने, और गीतकार हैं शकील बदायनवी।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में अब सुनते हैं फिल्म पतंगा का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है नीरज ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, पतंगा फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। FMN 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने नए तराने नए, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

जी हाँ, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म प्रेम रतन धन पायो के शीर्षक गीत के साथ। इसे गाया है पलक मुच्छाल और साथियों ने। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम गाने नए तराने नए, आकाशवाणी नागौर से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, जिसे हमने लिया है बाजीराव मस्तानी फिल्म से। इसे गाया है श्रेया घोषाल और वैशाली मांडे ने। गीत लिखा है सिद्धार्थ और गरिमा ने, म्यूजिक दिया है संजय लीला बंसाली ने।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं बागी फिल्म का ये गाना जिसे गाया है मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स ने। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत से सजाया है मीत ब्रदर्स ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म बधाई हो का ये गाना, जिसे गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। इस गीत को लिखा है मैलॉर्ड ने और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: बनके आई
1: आई श्रोताओं, कार्यक्रम के आगे हम सुनते हैं फिल्म फाइव वेडिंग्स का ये गाना, जिसे गाया है पलक मुच्छाल, रोमी ताहली और तनुज ने, संगीत दिया है विभास ने और गीत लिखा है अभिद्र कुमार उपाध्याय ने।

आइए श्रोताओं, गाने नए तराने नए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म रागिनी MMS2 का ये गाना, जिसे गाया है कनिका कपूर और मीत ब्रदर्स ने। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीत ब्रदर्स ने।

जी हाँ, बेबी डॉल में सोने दी, कनिका कपूर के गाए इस गीत के साथ ही गाने नए तराने नए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत अपनी दोस्त रमा सोनी को दीजिए। करते हैं नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तनाने नए। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: एक उत्तम जीवन मैं निकला ओ गटले, जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला, उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवू ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का

0: सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं ना कहीं संबंधित है आंखों से, नजरों से, नैनों से।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
4: जो

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, लक बाय चांस फिल्म का नाम, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कतारें नजर आ रही हैं। इनमें जेंजी से लेकर बुजुर्ग मतदाता शामिल हैं। वहीं वोट डालने को लेकर महिलाओं में भी विशेष उल्लास है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वोटर भी पूरे उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में मतदान किया। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अधिकाधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वोट डाला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भी जयपुर में मतदान किया और लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस चरण में 4,474 वार्डों में मतदान हो रहा है, जहां 83,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में 18,200 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी 309 नगर निकायों में मतदान पूरा होने के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी, जबकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर को कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संघर्ष, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इससे विश्व कल्याण की राह खुलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर के आदर्श नगर स्थित एक डार्क स्टोर का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच में कोल्ड स्टोरेज का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जबकि कई खाद्य पदार्थों को 5 डिग्री से कम तापमान में रखना जरूरी है। इसके चलते करीब 800 पैकेट डेयरी उत्पाद नष्ट करवाए गए। टीम को क्षतिग्रस्त और अवधि पार खाद्य सामग्री भी मिली, जिसे मौके पर नष्ट करवाया गया। निरीक्षण में स्वच्छता संबंधी कमियां भी सामने आई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध, घी, कार्बोनेटेड वाटर के नमूने जांच के लिए लिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी 13 सितंबर से एसएसओ पोर्टल पर अपना आवंटित परीक्षा जिला देख सकेंगे। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कल से 16 सितंबर तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहां पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ। एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ। और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच

करते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी मुझे बताएं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया है, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं, साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छह गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए, कोई बात नहीं ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे। नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये एक हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाए तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है,
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फायदे का सौदा होती है, इसके जरिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहां पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफर के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी, माता वैष्णो देवी, गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना, बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं

0: समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये 1 घंटा यानी कि 60 मिनट वीबीएस टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना, बहुत ही रिश्तेदार रखना होता जरूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है क्योंकि जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीजें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो जरूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी है, तुम 2 कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है। कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा 2 से 3 श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है,

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे, और इस गीत के साथ ही इजाजत चाहते हैं। आज का सुरीला सफर आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।
2: हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी, फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहां

पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

0: 1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की आपत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
0: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य।

0: भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास इस कुंदन लाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिंफनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागिनियों को सिंफनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से सर्वोत्तम संगीत रचनाओं में एक ये रचना है।

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने

0: अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरियना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही

0: मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप

0: नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

ना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले इस फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर पे।
0: अच्छा।
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है
0: जी। बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी,
1: ये
0: आपने
1: मेरा सौभाग्य है
0: जी,
1: मुझे मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी। हाँ। बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ भरा पूरा परिवार है, हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियाँ भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए, तो सब कोई कोई अच्छी सुनाता है, कोई अपने दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: दुख ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं आप?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूह से चैन दे, प्यार दे, जिंदगी बन गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी ज्योति जी, इंदौर से बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी। बच्चे हैं छोटे,
0: हाँ।
1: 1 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है, एक बड़ा एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी, सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी जी
0: जी, तो ज्योति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले हैं रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ध्यान रखना पड़ता होगा।
4: हाँ।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
4: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
0: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी।
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और जीवन भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोले तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, नीशागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमुन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में तो दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरे दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भरतपुरी परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो?

0: खेत। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: कैसा सोनम?
1: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
0: हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि सबका नंबर लगता रहे।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
0: हेलो सहेली, ये रोहित भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे। इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
1: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
0: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है। घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
1: जी, और
0: हमारे ये कपड़े हैं।
1: जी, और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीजें, हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीजों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा।
1: जी
0: इसी तरह
1: हाँ
0: जगते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
1: बिल्कुल
0: सारी चीजें।
1: जी,
0: जी
1: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है। तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
1: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका दिल्ली से।
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: आप?
1: जी, मैं ठीक हूँ। आप?

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद।
0: जी अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना।
1: हाँ, निकल जाता है ना, दिन भर ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा।
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर। परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा
1: हाँ,
0: खिलखिलाता सा परिवार है ना जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननंद भी साथ में रहती हैं।
1: हाँ,
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 2867-0288। मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

बाद जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था, चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते,

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। मां ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? मां सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। मां जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर मां को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: जाए दिन।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है, आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है। और कुछ सुनाइए।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 4:30 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में

0: बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थीं। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: I am good, sir.
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
3: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
6: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
6: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back,

0: चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई हम आए सच में?
1: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलते नजदीक आगे
2: आगे आगे
1: आ जाओ आ जाओ। चलो,
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था,
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
4: जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
7: होमी। ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
8: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
7: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ
8: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा।
7: अरे
8: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती, और माँ मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
7: क्या कहा, डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
8: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
7: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
8: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
7: कुछ नहीं होमी, बस करो।
8: माँ सुनो तो। अरे
4: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
5: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
3: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
4: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की, और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
3: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
4: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
8: सर मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
8: जी जी सर, धन्यवाद।
1: होमी जरा इसे देखो।
8: जी।
1: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
8: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
1: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
8: जी।
1: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
8: धन्यवाद सर।
4: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में

0: होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए 1 रुपया बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा

0: 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ निश विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, संस्कृति केवल किसी देश या राज्य की पहचान नहीं होती, बल्कि ये हमारी जड़ों, हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी जीवन शैली का हिस्सा भी होती है। हम जिस भाषा में अपनी पहली बात बोलते हैं, घर में जो लोग गीत सुनते हैं, त्योहारों को जिस तरह मनाते हैं और बड़ों का सम्मान करने से लेकर मेहमानों का स्वागत करने तक, इन सभी में हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है कि नहीं? लेकिन ज़रा सोचिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी लोक भाषा के शब्द भूल जाए, लोक गीतों की धुनें जो है वो केवल किताबों में ही रह जाए और पारंपरिक कला और हस्तशिल्प करने वाले कलाकार कम होते जाएं, तो क्या हमारी संस्कृति उसी तरह जीवंत रह पाएगी? शायद नहीं दोस्तों। इसीलिए हम बात करने वाले हैं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में हमारी भूमिका के बारे में। फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही इसकी विविधता होती है। अलग अलग प्रदेशों की अलग भाषा, पहनावा, खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले और त्यौहार हैं। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ की संस्कृति में लोक संगीत, कठपुतली, घूमर, कालबेलिया, मांड गायन और पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कथाओं की अपनी एक खास अलग ही पहचान है। लेकिन संस्कृति को केवल संग्रहालय में रखकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संस्कृति तभी जीवित रहती है जब उसे लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और यहाँ हमारी भूमिका शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी भाषा और बोली को सम्मान देना सीखें। हम अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोली को जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही वो जीवंत रहेगी। और आज हम आधुनिक भाषाएं सीखें, अंग्रेज़ी सीखें, दूसरी भाषाएं भी सीखें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ अपनी स्थानीय भाषा और बोली को भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के बच्चों को दादा दादी या नाना नानी से उनकी भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोक कथाएँ, कहावतें और पुराने शब्द उनसे सुने जा सकते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटी

कहावत के पीछे सैकड़ों वर्षों का अनुभव छिपा होता है। फ्रेंड्स, आज मनोरंजन के हमारे साधन बदल गए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में हमारी लोक कलाओं को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई युवा अपने क्षेत्र के लोकगीत को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर साझा करता है, किसी स्थानीय कलाकार का इंटरव्यू करता है या फिर पारंपरिक कला के बारे में वीडियो बनाता है, तो वो भी संस्कृति के संरक्षण में आपका योगदान है दोस्तों। यानी परंपरा और तकनीक एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तकनीक हमारी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। दोस्तों, किसी पारंपरिक वस्तु को खरीदना केवल खरीदारी ही नहीं है, कई बार उसके पीछे किसी कलाकार का हुनर, मेहनत और उसकी पीढ़ियों से चली आ रही कला होती है। इसलिए जब संभव हो स्थानीय कलाकारों और कारीगरों से बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे न केवल हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलता है बल्कि कलाकारों की आजीविका भी मजबूत होती है। हमारे छोटे से चुनाव से किसी कलाकार की कला आगे बढ़ सकती है। और फ्रेंड्स, हमारे घरों के बुजुर्ग जो है संस्कृति के जीवित दस्तावेज होते हैं, उनसे पूछिए कि पहले त्यौहार कैसे मनाए जाते थे, पुराने समय में कौन से लोकगीत गाए जाते थे, आपके गांव या शहर में कौन से मेले लगते थे और कौन सी पारंपरिक कहानियां प्रचलित थी। इन बातों को केवल सुनकर भूल जाने के बजाय हम उन्हें लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और परिवार के छोटे बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण भी होता रहेगा। और सबसे ज़रूरी, परंपरा को समझना सिर्फ दोहराना नहीं है दोस्तों। सांस्कृतिक संरक्षण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर पुरानी चीज़ को बिना सोचे समझे अपनाते रहें। समय के साथ समाज भी बदलता है, कुछ परंपराएं ऐसी भी हो सकती है जिनमें बदलाव की आवश्यकता हो। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की अच्छी और मानवीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए भेदभाव या नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं पर सवाल भी उठाने चाहिए, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण तभी सार्थक होता है जब वो सम्मान, समानता और हमारे मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़े। फ्रेंड्स, संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा किसी बड़े अभियान की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर में बच्चों को एक लोकगीत सिखा सकते हैं या फिर बुजुर्गों से एक पुरानी कहानी सुना सकते हैं, अपनी मातृभाषा में बातचीत कर सकते हैं और स्थानीय कलाकार से बनी वस्तु भी खरीद सकते हैं, किसी भी लोक कला या लोक नृत्य को सीख सकते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में सोशल मीडिया पर सकारात्मक जानकारी भी साझा कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि परंपराएं केवल अतीत की यादें नहीं होती, वो आने वाली पीढ़ियों से हमारा संबंध जोड़ने वाला पुल होती है। अगर हम अपनी जड़ों को समझेंगे तभी तो आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान को भी कायम रख पाएंगे। तो आइए हम आज ये संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति को केवल त्योहारों के अवसर पर ही याद नहीं करेंगे बल्कि अपने व्यवहार, अपनी भाषा और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसे सम्मान देंगे, क्योंकि संस्कृति किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। यह हम सभी की साझा विरासत है और इसे आगे पहुंचाना भी हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारे स्क्रीन तक ला दिया है। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक और खरीदारी से लेकर मनोरंजन तक हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तकनीक से जुड़ चुका है। लेकिन इसी आधुनिक जीवन के बीच एक सवाल भी सामने आता है कि क्या आधुनिक बनने का मतलब अपनी परंपराओं और मूल्यों को पीछे छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आधुनिकता हमें आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर दिखाती है, जबकि हमारे पारंपरिक मूल्य हमें अपनी पहचान और जड़ों से जोड़े रखते हैं। असली खूबसूरती तो तब है जब हम दोनों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़े। हमारे पारंपरिक मूल्यों में बड़ों का सम्मान, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, अतिथि सत्कार, सहयोग, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और ज़रूरतमंदों की मदद जैसे अनेक मूल्य शामिल रहे हैं। वही आधुनिकता हमें वैज्ञानिक सोच, नई तकनीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और नए अवसरों के बारे में सोचने का मौका देती है। सवाल यह है कि इन दोनों का तालमेल आखिर कैसे हो। मान लीजिए पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातचीत करते थे, आज सबके हाथ में मोबाइल है और बातचीत कम हो गई है। यहाँ आधुनिक तकनीक को छोड़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल हम दूर बैठे परिवार के सदस्यों से जुड़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन साथ बैठे परिवार के लोगों के बीच संवाद के लिए भी समय निकाल

सकते हैं, यानी तकनीक हमारे रिश्तों की जगह नहीं ले बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम बने। और इसी तरह हमारी परंपराएं हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। आज आधुनिकता हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए नई तकनीक और वैज्ञानिक समाधान देती है। अगर हम दोनों को साथ लेकर चलें तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर पर्यावरण के लिए बेहतर रास्ते तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज का युवा नई चीज़ें सीखना चाहता है। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति, फैशन, म्यूज़िक और विचारों से जुड़ रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया से जुड़ने के साथ अपनी भाषा, लोकगीत, लोककला, त्यौहार और स्थानीय परंपराओं को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। हम आधुनिक कपड़े पहन सकते हैं, आधुनिक संगीत सुन सकते हैं और नई तकनीक भी अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा में आप बात कर सकते हैं, लोकगीत सुन सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व भी आपको करना चाहिए। दोस्तों, आधुनिकता हमारी पहचान मिटाने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसीलिए आपकी परंपराओं में बदलाव भी ज़रूरी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि हर पुरानी परंपरा को केवल इसलिए नहीं अपनाया जाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है। समय के साथ समाज बदलता है और कुछ परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता भी होती है, तो हमें उन मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए जो सम्मान, समानता, सहयोग और मानवता सिखाते हैं। इसीलिए सही रास्ता ना तो अंधी आधुनिकता है और ना ही बिना सोचे समझे हर पुरानी बात को स्वीकार करना। सही रास्ता है जो अच्छा है उसे बचाएं, जो उपयोगी है उसे अपनाएं और जिसमें बदलाव की ज़रूरत है उसे समय के अनुसार बदलें। तो दोस्तों, पारंपरिक मूल्य और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें लेकिन मानवीय संवेदनाओं को बिल्कुल नहीं भूलें। हम नई सोच जरूर अपनाएं लेकिन अपने संस्कारों का सम्मान करें। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें लेकिन अपनी जड़ों को भी याद रखें, क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए उसकी मजबूती उसकी जड़ों से ही आती है। तो हमें भी ऐसा संतुलन बनाकर रखना चाहिए, अपनी सोच में आधुनिक, व्यवहार में संवेदनशीलता और अपनी जड़ों से आप जुड़े रहिए। इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट सिनेमा की बातों की। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में हर दौर की अपनी एक खास पहचान होती है। आज हमारे पास बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं, शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और हर हफ्ते नई फिल्मों की लंबी लिस्ट हमारे सामने होती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ फिल्में ऐसी हैं जो दशकों पुरानी होने के बावजूद भी आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही खास है। जी हाँ दोस्तों, क्लासिक सिनेमा और युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो क्लासिक सिनेमा यानी ऐसी पुरानी और यादगार फिल्में जिन्हें समय बीतने के बाद भी लोग देखना पसंद करते हैं। ये फिल्में केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि अपने समय के समाज, रिश्तों, सोच और संस्कृति की तस्वीर भी हमारे सामने रखती है। अगर हम हिंदी सिनेमा के पुराने दौर की बात करें तो शोले, मुगले आज़म, आनंद, गाइड और प्यासा जैसे फिल्मों ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़ाकर एक कला का रूप दिया। और इन फिल्मों की सबसे खास बात थी इनकी कहानी और किरदार। उस समय तकनीक आज जितने विकसित नहीं थी, लेकिन कहानी में भावनाएं थी, संवादों में गहराई थी और किरदारों में एक अलग पहचान थी। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी भी जब इन फिल्मों को देखती है तो कई बार उसे लगता है कि कहानी पुरानी ज़रूर है लेकिन उसमें कही गई बातें आज भी प्रासंगिक है। अब सवाल यह है कि आज की तेज़ रफ्तार वाली युवा पीढ़ी को क्लासिक सिनेमा क्यों देखना चाहिए? दोस्तों, पुरानी फिल्मों को देखना केवल पुराने ज़माने में लौटना नहीं होता, ये अपने सिनेमा की जड़ों को समझने का एक तरीका भी है। आज के युवा इन फिल्मों के जरिए ये जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, लोगों के रिश्ते कैसे थे, परिवार और दोस्ती को किस नज़रिए से देखा जाता था और सिनेमा किस तरह सामाजिक मुद्दों के पर्दे पर प्रस्तुत करता था। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें आधुनिक सिनेमा को छोड़कर केवल पुरानी फिल्में ही देखनी चाहिए। हर दौर के सिनेमा की अपनी ही खूबसूरती होती है। दोस्तों, आज की फिल्मों में नई तकनीक, नए विषय और नए विचार हैं, तो क्लासिक फिल्मों में कहानी कहने का एक अलग ही अंदाज, संगीत की मिठास और अभिनय की गहराई भी देखने को मिलती है। आज सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो के दौर में हमारा ध्यान कुछ ही सेकंड में एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर चला जाता है और ऐसे समय में कोई पुरानी फिल्म पूरी बैठकर देखना शायद थोड़ा अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छी कहानी के लिए हमेशा तेज़ रफ्तार ज़रूरी नहीं होती। और क्लासिक सिनेमा की बात हो और उसके संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज भी शादी ब्याह से लेकर सोशल मीडिया रील्स तक अपनी जगह बनाए हुए हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों की आवाज़ और पुराने संगीतकारों की धुनों ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसी विरासत दी है जिसे पीढ़ियाँ आज भी सुनती है। शायद यही क्लासिक सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिल्म पुरानी हो सकती है लेकिन अच्छी कहानी और सच्ची भावनाएं कभी भी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, तो अगली बार जब आपके पास थोड़ा खाली समय हो तो किसी नई रिलीज के साथ एक क्लासिक फिल्म को भी अपने वॉच लिस्ट में जगह जरूर दीजिए। हो सकता है आपको उसमें सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि अपने सिनेमा और अपनी संस्कृति का

एक खूबसूरत हिस्सा देखने को मिले। तो इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, और ले चलते हैं आपको क्लासिक सिनेमा के पुराने दौर में।

तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण भी कीजिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युगवाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 5:30 हुआ चाहते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। सखियों, नजर फाड़ दे भाटे ने चुगली को जी चीज, सो सो मण दूध फाड़ दे एक काजरिये रू बीज, मनसू माफी देवणी हृदय में रखणो नजेर, जेड़ा तेड़ा आपणा बांधो किससे बेर। सखियों, हमें किसी से ही बेर नहीं रखना चाहिए, जो अपने हैं उन्हें हमें मन से माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बुरी नज़र जो होती है वो पत्थर को भी फोड़ देती है, पत्थर को भी तोड़ देती है, इसलिए बेर बहुत ही बुरी चीज होती है। सखियों, आज के दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में, आज ही के दिन को यानी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, समझो पेड़ों का मोल, मत कटने दो पेड़ों को, पेड़ है सबसे अनमोल। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जीवन हरा भरा बनाओ, वन में हरियाली लाओ, अपने जीवन को स्वच्छ बनाओ। आओ हम मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती को हरित बनाएं, पेड़ लगाकर जग महकाएं, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, साथ ही जल हैं तो जीवन है। सखियों, भारत में आज ही के दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य वो है देश के जंगलों, वन्य जीवों और जीव विविधता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान देने

0: वाले वन्य प्रेमियों, वन रक्षकों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साहस को सम्मान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इतिहास और शुरुआत की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2013 में इस वन शहीद दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। सखियों, खेजल्ली के बारे में आपने जो नरसंहार हुआ था खेजल्ली गांव में, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मोटे तौर पर जाने तो 11 सितंबर की तिथि का चयन वर्ष 1730 के ऐतिहासिक खेजड़ली राजस्थान नरसंहार की याद में किया गया था, जहां अमृता देवी विश्नोई और 363 अन्य ग्रामीणों ने पवित्र खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंत्री अभय सिंह ने इनकी जान ले ली थी, क्योंकि ये जो है खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए खेजड़ी पेड़ से चिपक गए थे। अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां जो थी वो खेजड़ी के पेड़ से चिपक गई, और महाराजा अभय सिंह ने उनका जो है वहीं पर उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया था। जैसे ही राजा को पता चला तो राजा को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, और बाद में उन्होंने बहुत पश्चाताप के साथ ही इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और प्रकृति व वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलाई। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वन कर्मियों की स्मृति में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं, और वनों और वन्य जीवों के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वनपाल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित भी करते हैं इस दिन। हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: सखियों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में। सखियों, अमृता देवी नाम की एक महिला ने विरोध किया खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, जो प्रमुखतः विश्नोई संप्रदाय से थी। अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों का सिर कलम करने का आदेश राजा के मंत्री अभय सिंह ने दिया था, जिन्होंने मतलब अमृता देवी के सिर काटने के बाद उनकी बेटियों ने उसका विरोध किया था। सिर कलम करने का सिलसिला लगातार जारी रहा और इस घटना में 363 विष्णु ही शहीद हो गए। ये कहते कहते कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अमृता देवी के शब्दों का अर्थ है, यदि किसी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी ये हमारे लिए सार्थक होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। ये अमृता देवी के शब्द थे। जब महाराजा को इस नरसंहार के बारे में पता चला तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने विश्नोई क्षेत्रों में पशुओं की हत्या और वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। साथ ही महाराजा ने तांबे की पट्टियों पर उत्कीर्ण एक फरमान जारी कर दिया, जिसमें विश्नोई गाँव के भीतर और आसपास के खेजड़ी वृक्षों की कटाई और पशुओं के शिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। खेजड़ली नरसंहार 20वीं सदी के पर्यावरणवादी चिपको आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ये तो थी एक अच्छी शुरुआत, और हमें भी अभी तक ये शुरुआत जो है लगातार चलाए जा रहे हैं और रखनी ही है। अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।
3: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब की अपने सीधे में भर लूंगा।

0: सखियों, चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं जल संरक्षण, महिलाओं की अहम भूमिका। सखियों, धरातल पर बहने वाली जल की धारा नदी होती है। नदियों की, तालाबों की भूमिका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हमसे बेहतर कौन जानता है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में भी नदियों और तालाबों की महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। सखियों, नदी का प्रवाह धरती पर जीवन निर्धारित करता है, इसलिए जल का, नदियों का, तालाबों का संरक्षण करना ज़रूरी है। आज हमारे देश में दो ही तस्वीरें दिखाई देती हैं जल के आधार पर। पहली, प्रदूषित, विलुप्त प्राय, दम तोड़ती नदियाँ, और दूसरी, हमारे हाथों में नहीं, आँखों में पानी। महिलाएं जल की प्रमुख उपयोगकर्ता होती है। हम खाना पकाने, कपड़े धोने, घर में साफ सफाई करने, परिवार की स्वच्छता, सफाई के लिए भी जल प्रयोग करती हैं। साथ ही जल प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की वर्तमान समय में विश्व, राष्ट्र, राज्य व गांव स्तर पर भी महिलाएं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही राष्ट्र स्तर पर भी हमें गंगा नदी को लेकर उमा भारती का कार्य, नर्मदा नदी को लेकर मेघा पाटेकर का नाम भी याद होना चाहिए। अब हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: सखियों, जल संरक्षण में महिलाओं का काफ़ी अहम योगदान रहा है, क्योंकि घरेलू कार्यों में संबंधित कार्यों से लेकर महिलाएं जो है अपने घर को चलाने, साथ ही सब जगह जल का प्रयोग महिलाओं के हाथों में ही होता है। इसलिए महिलाओं द्वारा अपने व्यवहार में जल संरक्षण को शामिल करते हुए अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। सखियों, हम किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं जल संरक्षण को लेकर? तो देखिए, दैनिक प्रबंधन और उपयोग, खाना पकाने, साफ सफाई और परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए पानी का प्रबंधन महिला ही करती है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और भू जल पुनर्भरण के तरीकों को बेहतर बनाती है। साथ ही जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को भी जो है 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही देश के ग्रामीण इलाकों में लाखों महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट के जरिए पानी की शुद्धता जांचने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही जल की गुणवत्ता और साथ ही कृषि और सिंचाई में भी जल का विशेष महत्व है। महिला किसान सूक्ष्म सिंचाई, जो माइक्रो इरिगेशन होती है, और वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को अपनाकर कृषि में पानी की भारी बचत हो रही है और खपत भी कम हो रही है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, हमने अभी एक प्यारा सा गीत सुना था। अब ब्यूटी टिप्स की बात करें तो आजकल जो है, जो युवा हैं उनमें टैटू का शौक या ट्रेंड चल रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कई लोगों को टैटू बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। टैटू बनवाने के बाद लंबे समय तक दर्द, तनाव या फिर एड्रेनलिन के बढ़ने से शरीर में कंपकपी या फिर कमज़ोरी आ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। जिसे टैटू का शौक या टैटू फ्लू कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में टैटू शौक क्या होता है? लंबे समय तक सुई चुभने और दर्द के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठंड लगती है या फिर चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसके रीज़न की बात करें, कारण की बात करें, तो ये शरीर की एक नेचुरल रिएक्शन है। जब वह लंबे समय तक दर्द और विदेशी शाही को, इंक को सहन करता है, तो ये रिएक्शन होना आम बात होती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में या फिर बिना साफ सुथरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी जानलेवा कंडीशंस भी हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। त्वचा में इन्फेक्शन भी हो सकता है। टैटू वाली जगह पर लालिमा, सूजन, दर्द या फिर मवाद आ सकता है। टैटू के जोखिमों में, मतलब आप जब टैटू बनवा रहे होते हो तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। एलर्जी भी हो सकती है। टैटू की शाही से त्वचा पर खुजली, चकते या फिर सूजन भी हो सकती है। ये एक संक्रामक रोग को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही इसके दाग भी हो सकते हैं। त्वचा पर एक्स्ट्रा टिश्यू या फिर निशान बन सकते हैं। तो जब भी आप टैटू बनवाने जाएं तो विशेष तौर पर ये जानकारी लेकर ही जाएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। तब तक रहिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। यह प्रोग्राम का पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

और आइए अब सुनते हैं युगल गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम पत्थर के सनम। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आपकी नज़र।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कालूराम प्रजापति का गाया ये लोकगीत।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। स्वर है करीम खां खेजड़ला का।
1: खेजड़लो बे सदर उत दिस

0: करीम खान खेजरला के गाए इस लोक भजन के साथ ही बाटिकेश्वर कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में, दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत और राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत, कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ। 147 निकायों में शाम 5 बजे तक लगभग 68% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए जारी रहा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ। शहरों की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। दोपहर 3 बजे तक बाड़मेर के धोरीमन्ना में 85% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं उदयपुर के मावली में 80% वोट डाले गए। बाड़मेर के चौहटन में 78% मतदान दर्ज हुआ। प्रमुख नगर निगमों में दोपहर 3 बजे सबसे कम अजमेर में करीब 48% वोट डाले गए। मातृशक्ति और युवा शक्ति, नव मतदाता तथा बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग में मतदान को लेकर जोश देखा गया। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी के बाद मतदाताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: पिंगवाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
2: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
3: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाए और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी के प्रकार की व्यवस्था की जाए।
0: निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की जगतपुरा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को जनता के हित में बताया।
4: राजस्थान को विकसित बनाने का, निकाय को विकसित बनाने का हमारा दायित्व होता है। हमारा वो संकल्प वन स्टेट वन इलेक्शन वो हमने पूरा किया है और राजस्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान निश्चित रूप से जनता सुखद महसूस कर रही है कि हमारे 2 महीने के अंदर हमारे चुनाव हो जाएंगे और फिर आराम से राजस्थान की जनता के विकास के कार्य होंगे।
0: दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही 18,266 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। 162 निकायों में हुए पहले चरण में मतदान प्रतिशत 76.41 रहा। कुल 309 निकायों में हुए इन चुनाव के लिए 38,929 उम्मीदवार मैदान में हैं। 76 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर होंगी। भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज दोपहर में नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए समर्थन दोहराया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई है। इनका सबसे ज्यादा असर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, किंतु भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अड़िग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके तहत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकेंड से कम करना है। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
5: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशंस हमको दीजिए

0: जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि मेले में साफ सफाई पर विशेष जोर रहेगा। मेले को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने सभी मेलार्थियों से स्वच्छता को लेकर सहयोग करने की अपील की है।
1: अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की, वो सारी सुविधाएं जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस बार हमने एक आग्रह किया है प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करे। इसमें जितने भी भंडारे लगेंगे उसमें जो भंडारे स्वच्छता के सारे नॉर्म्स पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो है मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। हमने अस्पतालों से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से और जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं हो तो हमने सभी नाले और झरने हैं उनके आसपास पर्याप्त जाप्ता और हमारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं।
0: राज्य में मानसूनी गतिविधियों का दौर एक बार फिर आज से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके असर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश का ये दौर 15 सितम्बर तक जारी रहने के आसार हैं। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट किया गया है। इस बीच आज दोपहर बाद भरतपुर में घनघोर घटाएं छा गईं और 1.5 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। 12 में भी दोपहर बाद कुछ देर जोरदार पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अब से कुछ देर पहले बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि मौसम के इस बदलाव से पहले अधिकतर स्थानों पर उमस भरी गर्मी बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 से ज्यादा स्थानों पर दिन का तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा जा रहा है। पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 37 डिग्री के पास पहुंचने से उमस और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत। और राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव की खबरों के साथ। जिले में 11 स्थानीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में कराए गए। पहले चरण में चूरू, सुजानगढ़, रतननगर, राजगढ़ और छापर में मतदान हुआ। इन 5 निकायों के 205 वार्डों के लिए 276 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान में 1,86,004 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजगढ़ नगर पालिका में सबसे अधिक 77 1% यानी सबसे कम मतदान हुआ। चूरू में 72.81, रतननगर में 75.99 और छापर में 75.04% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के वोट 9 सितंबर को डाले गए। दूसरे चरण में आज तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, साहवा और बीदासर सहित अन्य निकायों में मतदान हुआ। जिले के कुल 450 वार्डों के लिए 1,545 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव कार्यालय बनाए जहां समर्थकों की आवाजाही रही। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन

0: संगठन में सभाएं की, आचार संहिता लागू होने के बाद उसके पालन पर भी ध्यान दिया गया। अब चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी है। जिले की 11 निकायों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि चूरू की मतगणना केंद्रीय विद्यालय में 14 टेबलों पर 8 राउंड में होगी। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या कॉलेज, छापर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर में SBD कॉलेज और तारानगर में जालपा देवी कॉलेज में मतगणना होगी। सहावा में मोहिनी देवी चाचाण कॉलेज, रतनगढ़ में केशरी देवी लोहिया कन्या कॉलेज, राजल देसर में राजकीय कॉलेज और बीदासर में ज्ञान ज्योति उमा शिक्षण संस्थान में मतगणना की व्यवस्था की गई है। इस बार मॉनसून की बारिश औसत से कुछ कम रही। बारिश की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसल के पत्ते पीले पड़ने लगे थे और किसान चिंतित नजर आए। बीते सप्ताह जिले में जोरदार बारिश हुई, इसके बाद खेतों में फसल फिर से हरी होने लगी है। बारिश से फसलों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लोक देवता गोगा जी की जन्म जयंती पर चूरू की मुख्य गोगा मेड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। परंपरा के अनुसार विभिन्न गोगा मेड़ियों से निशान यात्राएं ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य मेड़ी पहुंची। करीब 35 निशानों के साथ श्रद्धालुओं ने मुख्य मेड़ी में धूक लगाई। श्रद्धालु नाचते गाते और गोगा जी के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों ने विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगाईं, झूले भी लगाए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल सेवा की गई। इसके अलावा मेला स्थल पर एम्बुलेंस तैनात रही और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। चूरू में ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। संत निवृत्त नाथ जी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस तरह की ई लाइब्रेरी उपयोगी है। लाइब्रेरी में पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चूरू के लोहिया कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ की ओर से रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। सुजानगढ़ नगर पालिका में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की गई है। पालिका प्रशासन ने शहर से करीब 35,000 घरों का सर्वे किया है। इसके बाद 30 गाड़ियों के माध्यम से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था से घरों के आसपास जमा कचरे से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। घड़ाऊ गांव निवासी भारतीय सेना के 91 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक राजेश चौहान बीते दिनों वीर गति को प्राप्त हुए। उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके सम्मान में गाँव में तिरंगा रैली निकाली गई। चूरू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर में आज शांति सागे वोट पड़िया। वोटानी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। भारत री सदारत और मेजबानी माय 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काल नई दिल्ली माय शुरू हैला। दुनिया रा कई खास नेता दिल्ली पुग्या। देश माय आज फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी शुरू, वन टैग सुबितो शुरू भियो। और प्रदेश रा कुछ हलका माय चौमासा री बिरखा ओजू हुई। काल 29 जिला में बरसात, येलो अलर्ट। समाचार प्रदेश माय नगरीय निकाय चुनाव दूजा दौर रा चुनाव माय वोट देवन काम थोड़ी देर पहले पूरो क्यों। इन 147 निकाया माय सिंजा 5 ताई करीब 68% वोट। सवारे 7 बजे सरूफियो वोट देवन रो सिलसिलो सिंजा 6 बजे ताई मतदान केंद्र माए दाखिल भेजावन वाला सारू चाल तो रहो। इन दौर माए 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 120 नगर पालिकाओं रा चुनाव सारू वोट पड़िया। शहरारी सरकार सारू वोट देवन वाला माए माव नीचे आए। दोपहर 5-3 बजे ताई बाड़मेर जिला रा धोरी मन्ना माए 85% उम्बत्ता वोट पड़ गया है। तो पेरा 3 बजे ताई भी माए 80% जबकि बाड़मेर जिला रा चटन 78% वोट पड़ गया है। खास नगर निगम माए शामिल अजमेर माए दोपहर 3 बजे ताई सबों कम करीब 40% वोट पड़िया। नावा वोट देवन वाला नुआ लोगा और बुजुर्गा समेत हर उम्र रा लोगा माए वोट देवन रो उमाव निचर आयो।
2: पिंगाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
3: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
4: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाएं और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए।
1: निकाय चुनाव रा दूजा और आखिरी दौर में आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए जगतपुरा हलका रा एक मतदान केंद्र माए वोट तीनों ई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वे एक राज्य एक चुनाव री सोच ने जनता रो भलो करण वाली बताई। दूजा दौर रो मतदान पूरो फेवण सा गई 18,266 उम्मीदवारा रो सियासी भाग ईवीएम माए बंद वे गयो। 9 सितंबर ने व्या पहला दौर रातेत 162 स्थानीय निकायां माए 76.41% वोट पड़िया हा। कुल 309 निकायां माए चुनाव सारू 38,929 उम्मीदवार चुनाव मैदान माए है। 76 वार्डा माए उम्मीदवार बिना चुनाव सगला री एक राय चुनी चिया। वोटां री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए भारत री सदारत और मेजबानी माए काल नई दिल्ली माए शुरू फेरिया 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माए न्यारा न्यारा मुद्दा माथे सकारात्मक और सार्थक चर्चा फेवण री उम्मीद जताई है। शिखर सम्मेलन माए ब्राजील चीन मिस्र इथोपिया इंडोनेशिया भारत ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 खास उभरती और विकासशील माली व्यवस्थाओं रा नेता एक संग विचार करेला। नई दिल्ली रा भारत मंडपम माए फेवन वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रो मुद्दो लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण राखी गयो है। शिखर सम्मेलन माए रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका रा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी रा युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दुनिया रा कई नेता शामिल फैला। इथियोपिया रा प्रधानमंत्री आबी अहमद अली सम्मेलन माए भाग लेवेला। ई बीच प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पाछे नई दिल्ली माए रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री मोदी रो आज सिंजा ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सागे बातचीत करन रो कार्यक्रम है। ई बीच ब्रिक्स देशां रा वित्त मंत्रियां और केंद्रीय बैंक रा गवर्नरां री मुंबई माए भी मीटिंग माए टैरिफ और गैर टैरिफ अड़चना समेत एक तरफा कारोबार और माली उपाय लागू करण माथे गंभीर चिंता जताई ची। सदस्य देश WTO ने ध्यान राखता था का स्वतंत्र पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था री हिमायत दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि आतंकवाद रो बदलता रूप माए खतरो लगातार बधरियो है पर भारत रो इनरा सगला रूपां रे खिलाफ लड़ाई रो संकल्प अडिग है। अमेरिका माए 11 सितंबर 2001 ने भया आतंकवादी हमला री 25वीं बरसी रे मौके सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो के आतंकवाद आखी दुनिया माए अनगिनत लोगां ने जान लेनी है। वे कहो के सरहद पार हूं आतंकवाद री जद माए आयो भारत दशकाओं इनरे खिलाफ लड़ाई माए आगे रहो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मुंबई में फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी सारू वन टैग सुविधा की शुरुआत की। इन तेत गाड़ी रो मालिक मौजूदा फास्टैग ने राजमार्ग यात्रा ऐप जरिए नुआ बैंक खाताओं जोड़ सके है। इस मौके गडकरी कहो कि टोल प्लाजा में इंतजार 10 सेकंड कम करनो पड़े, सरकार चालू माली साल रा आखिर ताई एड़ी व्यवस्था में खास ध्यान दे रही है। वे बतायो कि देश भर माए हाल ताई 13 करोड़ बत्ता फास्टैग जारी कर दिया गया है।
1: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशंस हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है। और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
0: सवाई माधोपुर जिला में रणथंभौर रो नामी त्रिनेत्र गणेश मेलो काल शुरू फैला। 3 दिन रा ई मेला में यात्रुओं री मोटी तादाद में आमद रफ्त रा आसार न ध्यान रखता थका पुलिस प्रशासन री ओर पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। जिला कलेक्टर कानाराम बतायो कि मेला में साफ सफाई माथे खास ध्यान दियो जावेला और सिंगल यूज डिस्पोजेबल सामग्री काम नी जावेला।
2: अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जहां भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की वो सारी सुविधाएं जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस बार हमने एक आग्रह किया है प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज करें। इसमें जितने भी लगेंगे उसमें जो भंडारे स्वच्छता के सारे नॉर्म्स पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो है मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस भारी बारिश के कारण है। तो हमने अस्पतालों से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से या जंगल से बहुत तेज आता है, इतना नहीं है। तो हमने झरने हमारे
0: अरब मौसम राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी ओजू स्वरूप बन रहा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माय कठे कठे बिरखा फै सके है। बारिश रो ओ सिलसिलो 15 सितंबर तक चालतो रेवण री संभावना है। काल 29 जिला माय बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन बीचे आज दोपहर पाछे भरतपुर माय 1.5 घंटा तक झमाझम में बरसियो। 12 माए दोपहर पाछे थोड़ी देर ताई जोरदार बिरखा भी। राजधानी जयपुर माए कठे कठे छांटो छिड़को भियो। लारला 3-4 दिन बिरखा नी वेवणु पारो चढ़वा लाग्यो हो। पिलानी माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। 10-32 ठोड़ा अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस बीच चाल रियो है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू समेत कई ठोड़ा पारो 37 डिग्री सेल्सियस का न पूग गयो। मौसम विभाग आवता 2 सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य ऊंचो रहवण रा आसार जताया है। बालोतरा जिला में गुढ़ामलानी रतनपुरा गेला माथा एक कार और गाड़ी री आमी सामी रे टक्कर रे कारण कार में सवार एक ही परिवार री 2 महिलाओं री मौके ही मौत वेगी, जबकि 5 जना जख्मी फेंक्या। जोधपुर जिला में शेरगढ़ कने भूंगरा मेगा हाईवे माथे बीती रात पैदल रामदेवरा जा रहा यात्रुआं रे एक बेकाबू कार री फेंट में आ जावणु 3 यात्रुआं री मौत वेगी। शेरगढ़ रा थाना अधिकारी बतायो कि ये लोग नाथासर गांव रा रहवासी हा। राजधानी जयपुर रा करधनी हल्का माए एक मकान एक महिला और 3 टाबनियां री लाशां बरामद करी जी। जयपुर पश्चिम रा पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण बतायो कि शुरुआती जांच माए परिवार रा मुखिया कानियो आ वारदात करण री जानकारी मिली है। पुलिस मामला री जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दी

खेती बाड़ी सुना सेंग भयाने भयाने आपरे सुरेश भैरा घना और हेतु कोड राम राम। तो भैया रामा सामा तो होगा, लेकिन मैं आपने एक काम की बात बता दूं कि आवनाड़ो जो को 5-7 दिन एक हफ्तों है जो कृषि विशेषज्ञ है या अपने मौसम वैज्ञानिक है जगह सगड़ा को ओ कहणु है कि भाई इस सप्ताह में थोड़ी बरसात आंधी में भायरो छाटा छिड़को कटी। जरूरी कोनी कि ये एरिया में कटी कोई गांव में हो जाए कोई में कौन है, तो जका भी भाई आपकी कोई फसल है पक्यूड़ी है हीटियाँ तोड़े या मूंग पाट या तो अपन आप जरूर व्यवस्था करा कि मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया और ढक्कन की है जबकि अपन व्यवस्था पूरी रखा बढ़िया तरीके। अगर अपन लागे कि आप गाँव आसे पास मौसम खराब उनाड़ो है तो आप पहले तैयार है वहाँ भी फसल ने भिजिया कोनी ये वास्ते मीणिया तिरपाल ए सगड़ा की अपन व्यवस्था जरूर रखनी है। अगर कोई भाई फसल नहीं ढुकिया है तो 1-2 दिन इंतजार भी कर सके, खड़ी फसल को तो की कौन बिगड़े देती काटड़ी को अगर न्याणा अपने खेता में पीड़िया है तो आंधी बे मारूँ बे उड़ सके गड़ भी सके। तो ओ हो मौसम की जानकारी। और अब भैया बता करा कि भाई हम ऐसे ही देखा आप खेता में DAP यूरिया सब जगह पोषक तत्व है तो एक रासायनिक खाता तो भली अपन नाका पर पैदावार जकी कम आवे और निरंतर है जकी आप रासायनिक खाता में आप बढ़ोतरी करता जावा के भाई पहली देखता कि भाई 10 बीघा को एक DAP को आप कट्टो नागता एर धीरे धीरे 5 बीघा पर आया। आज आ कंडीशन होगी कि भाई एकड़ में एक कट्टो ना कहते 5 बीघा 2-2 कट्टा 3-3 कट्टा शुरू होगा तो भी वो आपने फायदो नहीं हुए लो अपनी जमीन है जी निरंतर बंजर होती जा रही जितों आप रासायनिक खाद नाख्या जावाला बत्ती अपनी जमीन बंजर हो जाए बी की आदि हो जाए बी के वास्ते आप कहीं करा कि भाई आपा की जमीन कमाई ने आप निरंतर खाता नाखता आवाया जका भी खाता वेस्ट पड़ी रहे कि पूरी जकी मिलनी पौधों लेवे को नहीं मिले को नहीं रासायनिक भी मियाण का है तो आप कहीं करा भी वास्ते जकी बाप जकी स्टोर पड़ी है जमीन के मायने बा खाद है जकी पौधा ने मिल जावे तो बी वास्ते भैया जका अपना वैज्ञानिक है बे जीवाणु यान का तैयार करिया लेकिन आप जीवाणु खाद गया के यान का बे मिया मिया सूक्ष्म जीवाणु जका आप आई क्यों तो देख ही नहीं सका सूक्ष्म दर्शी देखा तो अपन पतो लगे कि भाई रील में बे जीवाणु है ये अपन बे जीवाणु दिखे कोनी तो बी को अगर आप प्रयोग करा तो आप जकी जमीन के मायने एक्स्ट्रा अपनी खाद है जकी को आप लाभ ले सका। जीवाणु कहीं हुए एक प्रकार कोई रासायनिक उनमें बिल्कुल प्राकृतिक उर्वरक हुए जकी आपने पौधा की सेहत सुधारण वास्ते और मिट्टी में जगह पोषक तत्व

0: फुड़िया बे को काम हुए कि वे पौधा तक पहुँचावे। अब बात करें कि भाई हे काई अब प्रयोगशाला में एक तैयार करी यान की खाद है या यान का सूक्ष्म जीव है जगह काय करे कि जमीन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वे जगह बैक्टीरिया है जगह बेन घोलगी अभी खाद ने पूरी गुलनशील बने जी कई बार देखा कि आप देखा कि खाद पड़ी है मारद खाद गुड़ी कोनी तो बीको इलाज वो ये कि आप सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रयोग करा। और इनका लाभ बार बात करें तो पोषण में वृद्धि एक तो आप कहें कि यह जगह हवा में नाइट्रोजन और मिट्टी में एक गुलनशील फॉस्फोरस नाइट्रोजन पोटेशियम की भी पड़ी है तो भी ने जगह गोल पौधे तक प्रयोग में ले जा दिया पौधे काम में ले जा देवे। और एक है लागत की कमी आप एक्स्ट्रा खाता ना कहीं यहाँ भाई बत्ती खाता ना कहाँ तो भी आप नागनी कौन पड़े जटे एक कट्टे काम चले आपने एक हेक्टर के मैं तो आप एक ही प्रयोग करा और वो भी आपने भी फसल के लिए पर्याप्त हुई जगह आपने लागत ऑटोमेटिक घटी बेहतर पैदावार। अब इनको मुख्य काम है कि वो जड़ा के मायन काम किया करे और अगर जड़ा में बैक्टीरिया लाग जी तो ये जड़ा को विकास बहुत फास्ट और ग्रोथ करवा दे जगह आपनी फसल है बीकी पैदावार अपन 25-30% तक आप बढ़ोतरी मिल जाए के आपने खेत के मायने सीधे ही जहाँ 1.5 क्विंटल मूंग हुए तो सीधे ही 2 हुई। तो अगर आप खाद को और एक जीवाणु को निरंतर से इस्तेमाल करा तो और इनको एक कवच भी बने सुरक्षा कवच ये जीवाणु यहाँ का सुरक्षा कवच है कि बैक्टीरिया का ही काम है कि आपने खुद के ऊपर दूजा ने हावी को नून दिया करे वो आ चाहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हावी हूँ और ये जीवाणु यहाँ का है कि ये निरंतर है ना नमी अपने आप बढ़ता भी जावे तो ये दूसरी बीमारियाँ हैं जो कि आप कोई फसल मायन हुए तो मैं भी अपनी रक्षा करें। तो इनका मुख्य प्रकार कता हुआ है आप बात करें कि भाई कता प्रकार को है तो एक हुआ राइजोबियम। राइजोबियम में इनको कहीं काम है इनके मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाणु अभी की शक्ति बढ़ानी और ज़्यादातर की काम के जाकर राइजोबियम आप बात करें तो राइजोबियम करे दलहनी फसल जो मूंग हुआ मटर हुआ सोयाबीन हुई अर जकी दाल वाली फसल है भी मायन आप राइजोबियम नामक जीवाणु खाद को प्रयोग करा तो बा ज़्यादा फायदेमंद हुई। बी के बाद में आइए PSB वो भी एक बैक्टीरिया है इको मुख्य काम है कि जमीन के मायन फॉस्फोरस DAP आप बात करें कभी DAP ना का फॉस्फोरस जमीन के मायन जत्ती भी आपने जमीन के मायन पड़ी है तो इको वो काम रहे कि भी फॉस्फोरस ने पौधा तक पहुँचाने को। एक और ये अगर NPK कंसोट्रिया जो इको का ही काम है कि वो तीनों को मिश्रण जैसे नाइट्रोजन एर फॉस्फोरस एर पोटेशियम पोटास इन तीनों संयुक्त रूप में काम करे तीनों सागे ले चाले तीनों बराबर मात्रा में पौधे तक पहुँचाने को इनको मुख्य काम है जीवाणु खाद को। तो इनका अनेक फायदा है अगर आप सही तरीके करा रासायनिक खाता को आपने जीवन के मायने आगू आ गए इनको प्रयोग निरंतर कम करनो है तो आप साथ साथ जैविक जीवाणु जता भी खाता है या जैविक खाता इनको भी आप प्रयोग करें जो कहीं अपनी कृषि लागत भी कम आ जाए और पैदावार है जकी बड़ी आ जाए और अपनी जमीन भी बीमार होने बच जाए। और भैया बातें तो और होगी पहले सुना एक काम की बात।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: तो भैया यही काम की बात, और बात अगर खेती बाड़ी में जरूरी तो खेती तो भाई करे। और आजकल रुझान देखा भैया को जो पशुपालन में बहुत ज्यादा दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि वो भी एक फायदे को सौदो है। तो मैं एक तरह का उन्नत पशुपालक का इस्लाम खान जी बहुत जकी बात करी तो करूँ भैया था तीन फूकते सुनो भैया बात। किसान भैया जी टाइम मिले अपना भैया जया करा। मैं आ जाऊँ रोहिणी साइड में बने एक मोटो खेत है, नरी गए बेचा चले वो भाई जो बैठो है चरावे तो करा मैं होते ही। राम राम साह।
5: राम राम साह। राम राम साह।
0: का नाम है साह?
5: मारो नाम इस्लाम है सर।
0: इस्लाम जी। तो इस्लाम जी था गांव किस है?
5: गांव तरनऊ है।
0: तरनऊ इतनी भैंसिया गाय सगली थांकी है?
5: हाँ अपनी है गाय
0: सगली।
5: सगली
0: कती भैंसिया कती गाय?
5: देख लियो 8 भैंसिया है, 7 गाय है, 15 है।
0: 15 जानवर है,
5: एक पाडो 16।
0: एक पाडो है
5: 16 जानवर है।
0: 16 जानवर है। हाँ ओके थांको है का
5: ओके तो अपा को ही है
0: थांको ही है।
5: हाँ
0: पूरा मतलब कता बीघा
5: है
0: वो?
5: है 17 बीघा।
0: 17 बीघा। 17 बीघा में पूरा बीड़ो ही रखियो।
5: 17 बीघा में बीड़ो ही रखियो।
0: वो भैंसा गाय वालों कत साल धंधो करो?
5: मानो होगा आज 15-16 साल।
0: 15-16 साल होगा।
5: हाँ
0: जब 15-16 साल था पिताजी करता कि थे शुरुआत करी?
5: पहले पिताजी थोड़ी राखता, बाद के मायने मैं ज्यादा राखूंडो होगा। पिताजी 2-4 राखता। दूध बेचा जाना वा दूध का कारण मतलब जो इनकम हुई जो ज्यादातर लाउंड होगा।
0: अबार कती दुआ है?
5: अबार देख लिया मुँह 10 दुआ है। पांच तो भैंसियां दुआवे। पांच गायें दुआवे। पांच है जगह ब्याह, 2 भैंसियां 3 गायें ब्याह।
0: तो थे यहाँ ब्याह भैंसो भी हो भैंसियां गायें ने के घगड़ी ब्याह घर ही रखो?
5: नहीं ये बिके जन बेच दिया, नहीं बिके जन वा दूध बेचिया करा, मतलब 4 रुपए देवे जन दे दिया।
0: रिकटी भाव में मिले तो ले लियो
5: पांच, दूसरी हां दूसरी ले लिया भाव में मिले तो।
0: बार कती दुआवे?
5: अब 10 दुआवे।
0: दूध कतो हो जी?
5: दूध जत रहे थे 1.5 क्विंटल
0: टाइम तो लगे
5: दुआरी में टाइम लगे और भीड़ा में खोल लीजिए एक लीजिए सबा पिड़ी जाती रहे खाली दुआरी में 2-3 जना लग गया।
0: तो अटे थे तालो खेलिया थी घर का ही व्यवस्था गिरी है
5: घर अंदर को पत्र थोड़ा है।
0: हाँ।
5: ए पंखा लगेड़ा।
0: हाँ।
5: ए थाना बनाई उड़ी। पौधी पानी की। खेली सब मतलब सुविधा सब गिरी है
0: सब गिरी है। बारे के बात करा के भाई जब बंटो को इन कहीं भी होता है जो भी
5: देखो बंटो देवा में भेड़ी ने के मतलब था के गांव की लाभ सिरांदा गांव की बाजरी को दड़ियो और मोटोड़ो टोंडो गोगलो है ना मोटड़ो वो भर रहना है माए ने रसकट गुड़ नाका बस माए ने खल नाका थोड़ गणी चूरी देवा मुड़ो बांध को देवा
0: बेड़ियो कर
5: बंटो और खल तो देखो बोए महंगी आवाज अंटा है के 630 रुपए लाग गए
0: मूंगी गणी। हां
5: बी पड़ता खावे को नहीं जब बी कर दड़ियो बाजरी गेहूं चूरी सब भेड़ी देवा
0: अगलो मिक्स के में कर जो भाई।
5: हां मिक्स कर।
0: तो एक अटे तो मार जाए बीड़े में बस बाकी की दिया था कुत्तर पुत्र मोल लेनी पड़े
5: कुत्तर उत्तर मोल ले लिया कुत्तर मूंगा की
0: नहीं नहीं हाँ वजह फलकती हुए
5: फलगट्टी हुए पाची खाद वगैरह बिक जे। मतलब
0: खाद कती हुई है
5: खाद हुई था के 30-35 टोली कहीं 40 टोली हुई है
0: जगह पाच पूरी बेचो
5: पाची मोल देने 3000 रुपए टोली
0: 3000 जमे था के कास हारो लाज नी नी कूस आ जाए।
5: हाँ पाच हारो लाज।
0: अब आ रहे फेट कती आवे
5: अब आ देख लियो फेट 60 रुपए है लड़ाई। भाइयों को बेचिया को फिक्स
0: अगर मुकुल जो
5: हाँ मुकुल 60 रुपये मतलब पानी वगैरह नहीं होना जाडो वो पतलो वो चाहिए 60 में फिक्स करियो है
0: फिक्स करियो है
5: हाँ
0: अट आ ले जाओ ठंडे रिजिए रहना पड़े
5: नहीं माँ के काम हुआ जाने तो आई जाए माँ के नहीं काम

0: वो जन में जाए दिया वहां।
1: जार पकड़े हो।
0: हाँ मैं कहा मुझे जन में फोन करे जन आज दे दिया रो।
1: अब अत्ता दाव डंडा राखो, अब दाव डंडा अत्ता राखो जन हरी बीमारियां भी आवे,
0: हाँ
1: तो
0: भाई
1: हरी बीमारियां को बताते हैं, एक तो भाई डोट ने बुलाओ के देसी नुस्खा करो।
0: देखो देसी करा पहले तो मतलब देसी हवाड़ू जी जना ठीक है, बस बाद के माए डॉक्टर ने बुलाए करा जी। कोई मुआ वाजी तो मतलब दवी दिया करा अजवाइन की मतलब उछाल की मतलब यहाँ करे दवियों उजे जना ठीक है दवियों नहीं हुए जन पच डॉक्टर ने बुलाया करा।
1: डोर टिप्पी का भी लागता होला सरकार,
0: हाँ टिक्का इक्का लगा
1: सब
0: मारे
1: बूटे मुटे हम लगा रहे।
0: टेमो टेम आ टिक्का मुआ का मतलब सब मतलब रोग आवे सको पहले लगा ही नहीं कर का टिक्का। पाचा कोई चींचड़ी वगैरह हुआ तो चींचड़ी लगावा टिक्का
1: टिक्का।
0: टिक्का लगावा इस पर कर दिया मतलब चींचड़ी की दवाई आवे जो क्यों टेमो टेम है ये।
1: अत जेवे गया बेशिया घरां मायने चींचड़े आ देखा कि प्रॉब्लम घणकरां के कल्डी हुए के कल्डी चींचड़े
0: कल्डी हुए
1: खाए
0: चींचड़ी हाँ
1: यार। अब बार जो ई टाइम है जो को कोई आपने मैं था डुए जना ओ माखी माथरी खड़ो हुए
0: हाँ वह
1: ई को
0: माखी
1: कहीं
0: मारे
1: इलाज करो।
0: ई को कहीं करना के पंखा लगेड़ा है आगे सामने थे आए देख लीजिए बोली कर घर पे जब पंखा चालू कर दिए एक तो एक माखी आगे दवाई है ना मतलब आपके फिनोल आवे और आवे वगैरह मतलब जबकि मतलब छिड़को छिड़क जाने जाना आवे को नहीं मतलब माखी पाचो
1: नहीं
0: कहीं बेहू नहीं वेदन कोई धुआं वगैरह करना पड़े और मतलब दुआरे करे जन परेशान करे माखियां बहुत है जन धुआं कर दिया धुआं को ना वे
1: ये कत्ता टाबर टिंगर रहते था पूरे ओ धंधो करो
0: टाबर टिंगर तो तीन है हमारे तो एक बच्ची है दो बच्चा है
1: बेन
0: बे
1: पढ़ो
0: स्कूल जावे हाँ पढ़ा वहाँ
1: बेन तो पढ़ो हुआ ना
0: बेन पढ़ा वहाँ
1: गोना बकरिया दो तीन फिरे ज्यादा तो कोनी
0: हाँ
1: कई
0: दो
1: दत्ती क्या गोना बकरिया पर
0: गोना
1: क्या
0: तो
1: लोग
0: ये
1: गणी पाले
0: मतलब
1: आ।
0: शौक उरा का गोना तो मतलब के गया के भैंसिया के गोना के कम बढ़िया करे ये दो गोना है नहीं ये शौक ही है
1: खाली शौक
0: खाली
1: रूपी।
0: शौक रूपी है अब घोड़ी वो भी देखिए शौक रूपी है।
1: घोड़ी भी थांकी भी है
0: हाँ
1: ना,
0: माखी है घोड़ी
1: तो आई खाली शौक रूपी
0: आ खाली
1: के
0: शौक हुई
1: भाई कई गवां में देखा जरा के सावा पावा भी
0: नहीं कोई
1: काटे।
0: सावा कोई आवे तो कोई माँ माँ को मायने काट दिया लेकिन कोई सावा कोई जरूर को नहीं आ पाएंगे मतलब वो नस उगो घोड़ी को मतलब रेणो रेणो घर के मायने
1: घर के मान घोड़ी रहनी रहनी।
0: रेणो रेणो हाँ
1: हाँ
0: घोड़ी
1: शौक है घोड़ी को, और
0: शौक
1: एक दो एक गोना राख जो
0: हाँ एक
1: बाकी
0: शौक
1: था को मेन धंधो है जो को भैंसिया गाय को।
0: भैंसिया गाय को दूध को ही है
1: तो इम नस्ल किसी किसी राखो था
0: एक
1: भैंसिया गाय।
0: नस्ल देखो एक तो मतलब पीवर खुंडी है बे जोटिया सामने देखे जगह तीन तीन चार है था मूरा नस्ल है दो ये था जापरी तीन है देखो भाई पंच कल्याण अब ये नस्ल है देख लियो
1: गया में
0: गया मायन अमेरिकन है ओनिस्टर है जस्सी है
1: पाडो किसी नस्ल को है।
0: ओ पाडो पीवर खुंडो है हरियाणा
1: हरियाणा की नस्ल को है,
0: हरियाणा नस्ल को है
1: तो था घर को पालड़ो है के छोटो लिया एक
0: नहीं
1: बार मोटो दे।
0: मोटो मोल लियो तो अब छोटो जो को दे दियो घर पे पालोड़ा जो को ये बार मोटो लेके आया
1: मोटो ले रहे
0: हरियाणा
1: हम
0: पंजाब लिया
1: नस्ल सुधार हुई।
0: नस्ल सुधार हो जाए पाती बच्चे लियावे ना कटड़िया तो कटड़िया बहुत अच्छी मतलब नस्ल हुआ जाए 100 रुपये बनते मतलब दूध वगैरह छोको हुए है
1: हाँ बड़ो ही
0: दूध
1: फायदा हो जाए।
0: हाँ
1: तो ई धंधे मायन था नपो लागे नुकसान लागे कोई भाई करनु सावे तो
0: नहीं
1: कहे।
0: नहीं बिग माइन बहुत मतलब नप है हवल चाले जरा तो हवल नहीं चाले जना ठान ठा है कि मतलब मोटी चीज तो मांगत ही है करे धन दो नीरो करे जना बहुत मतलब इनकम इनकम है इसके माइन
1: इनकम भाई रोजीना की रोकड़ इनकम है,
0: रोजना
1: उधार की
0: रोकड़
1: है कोनी।
0: उधार की है कौनी मतलब डेरिया रहूं रोजना लेवो तो दो ने तैयार है 10 दिनों हफ्तों लेवो तो ठीक है महीनों लेवो तो ठीक है मतलब कोई जरूरत हो जो तो 1.5 मास ही ले सका आप डेरिया रखानो मतलब इन ठा है कि भाई आप दूध आवे 1.5 क्विंटल रोज को
1: तो था के वो धंधो है तो बढ़िया चले एकदम,
0: माँ के बढ़िया चल रहा है
1: कोई
0: वो
1: भाई करना
0: एकदम
1: चाहे तो कोई नुकसान वाली
0: की
1: बात
0: नुकसान नहीं एक
1: है।
0: मायने
1: जमी था कि अति खुद गए तो ईमान थे था बीड़ो राख
0: हाँ
1: लियो।
0: 17 बिक गई है अपांगे बीड़ो राख लिया नींद मोल ले लिया
1: ताको बढ़िया धंधो चाल जाएगा।
0: बढ़िया धंधा चलता है
1: वाह शाह इस्लाम जी बहुत बढ़िया जानकारी दी आपको, गुण गुण धन्यवाद। राम राम सा।
0: राम राम साहे राम राम।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन

0: नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो भैया काम की बात होगी, सकले सुन लिया के भाई आपकी आपकी धुंधड़े गावे कोई गीत बदल कोनो ना। तो भैया मैं आज आपने सुनू सीमा मिश्रा एंड पार्टी डो गैडो नत मारी दीजिए गिरदारी। तो सुनो भैया गीत।

तो भैया ओहो गीत। और अब बात करें आप बाजार भाव की, तो आज भैया मूंग जगह नेड़ा मूंग बिकया है 1700 लेर, 8400 ऊंचा ऊंचा बिकया है। और पुराना मूंग अगर आपने कोई बिक है तो भैया 6000 लेर, 7500 थे बिकया है। बात करें गुआर की तो 6000 लेर 6200 तई गुआर ऊंचो ऊंचो बिक्यो है। जीरो 17500 लेर 20800 रुपया ऊंचो ऊंचो बिक्यो है। सूप 8000 लेर 12500 तई, और इसबगोल है जो को 9500 लेर 13400 रुपया तई बिको। अषाढ़ियों बात करा 5800 लेर 6000 तई ऊंचो ऊंचो बिक्यो। दाना मेथी की बात करा तो 6000 लेर 6500 रुपया है जकी आ ऊंची बिकी है। सिंधु सुओ आपने 6000 लेर 7600 रुपया तई, और तारामीरो 5800 लेर 6125 रुपया ऊंचो ऊंचो बिक्यो है। जवार 3500 4600, और चना है जगह 5500 लेर 5600, और मोट 6000 लेर 6800। काला तिलना की बात करा तो 10000 लेर 11200 बिकिया ऊंचा, और सफेद तिल है जगह 10500 तो शुरू हुआ है, और ऊंचा ऊंचा 11600 तई बिग्गा। और आप बात करा राइडे की तो 40% अगर आपने राइडे की फेट आवे तो वो बिकियो है 7900 रुपया। तो अपन कोई बहन लगे कि अपना भाव है जगह सही है तो आ ले मंडी में आ सके। और इसके साथ ही आप देखा जो आज अपने खेती बाड़ी को टाइम वो हो रही हो पूरो, तो आपके सुरेश भाई ने दिया उसी करा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 7:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ICC वीमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑफ द वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: फर्स्ट बॉल 20।
3: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। T20 हो और जोर शोर और तेज तर्रार के साथ अगर शुरुआत ना हो तो मजा ही क्या है। और इसी शुरुआत के साथ मैं

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल।

0: अनमोल यादें, अनमोल यादें,
1: संवरता है ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का
3: सुबह एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे साथ हैं

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल
2: गीतों को लिया जाता था।
3: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी कॉलर ट्यून के जमाने में सीडीज के जमाने
2: जी,
3: में
2: जी जी।
3: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी, अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
2: अच्छा,
3: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से।
2: हाँ,
3: जिसके बाकी के गाने बहुत चले, जिस फिल्म के बाकी के गाने बहुत चले, फिल्म भी बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर।
2: कामचोर, हाँ,
3: और कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
2: जी जी बिल्कुल।
3: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी, इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना
2: और राजेश
3: रोशन का म्यूजिक
2: जी जी,
3: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज
2: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी
3: जी।
2: आइए सुनते।

0: नामचोर फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने, हाँ, कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूं। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी। और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले चले डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था जी, आशा जी ने गाया हुआ, वो
0: जी,
1: बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
0: आइए सुनते हैं।

0: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं, और मेरा अगला
1: हाँ
0: गाना अनकही फिल्म से है
1: अच्छा,
0: जो 2006 में आई,
1: जी
0: और उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा, लेकिन मार्केट लीडर जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना, कुणाल गांजा वाला ने गाया है। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
1: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है, अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी न था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए श्रोताओं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अनमोल यादें,
3: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: अनमोल यादें।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसू, सरस्वती, ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।
2: पेड़ पर?
0: हाँ।
2: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें?
0: ओहो,
2: है तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
0: देखो सरसू, तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अकल कम है। वो देखो आंख फड़फड़ाता हुआ बैठा है।
2: फड़फड़ाता?
0: उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा? मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा। हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
2: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो चांगमंद के युग की बात कर रहे हो। क्यों जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ? अजी, ये सब पागलपन छोड़िए ना।
0: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
2: हाय मेरे भाग्य। अरे अरे, देखो जी, ये उस तरह मत जाना, पिछवाड़े में बहुत कांके हैं। उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जी सुनो तो। ओफो, कुछ भी करो तुम तो मेरा कहना मानने वाले नहीं। तौबा, मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा है, मैं जाती
0: हूँ। अरे सर फटा जा रहा है, कोई है? ए सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
2: फिर हम, ये क्या हो गया? वजन सब खून से भरा हुआ है। हम, ये क्या कर रहे हो तुमने? ये मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घास को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा लाती हूँ। ठीक है। क्यों जी, तुमने उस उल्लू को पाठ पढ़ाने के बदले खुद पाठ पढ़ लिया ना?
0: सरो, तुम हमेशा सभी बातों को हंसी मजाक समझती हो। मैंने तो पत्थर का निशाना उल्लू को ही बनाया था, मगर वो पत्थर थोड़े में ही फिसल कर पेड़ की उस टहनी से टकरा कर वापस मेरे सर को लग गया।
2: ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अर्जुन के वंशज हो और तुम्हारा निशाना हमेशा बराबर ही लगता।
0: सरू, मैंने जब से इस मनहूस उल्लू को देखा है तब से ही मनहूस समय का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं सरू, पता नहीं, मुझे मुझे आज एक तरह की घबराहट सी हो रही है।
2: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए

0: कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो अब बहुत हो चुका।
1: सरू तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
0: वो क्या है?
1: सरू कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था और उसमें वर्षा भी नहीं थी, उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
0: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े।
1: हाँ।
0: इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं। यही ना?
1: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
0: वाह वाह।
1: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
1: ओ, ओ, सरसू।
0: पर सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
1: नहीं भाई नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
0: ओहो, इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
2: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
1: सरू अगर माँ को कुछ हो गया तो? धत तेरी की छींक दिया। क्यों मेरे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार छींकना था क्या? चल जल्दी एक बार और छींक छींक छींक, नालायक कहीं का।
2: कोशिश तो करता हूँ बापू छींकने की, लेकिन नहीं हो सकता।
1: नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, निकल
0: जा। उस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो?
1: तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ढकों से दिख पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
0: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो, समय बीता जा रहा है।
1: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।
3: हाय भगवान, मैं मर गया। तो जल्दी आओ सरू, मैं गिर गया। हाय मेरा हाथ पांव टूट गया।
0: हाय क्यों जी?
3: हाय मेरा हाथ पांव टूट गया।
0: कैसे गिर गए? ओहो, मैं समझा कि कोई पुराने पेड़ गिरा। तौबा है, मैं तो तुम्हारी इन सब हरकतों से।
1: अरे देखो तो सही, उस कोने में
0: देखूं?
1: उस कोने में देखो, उस दरिद्र उजली छिपकली को, वो मेरी बाईं ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पांव फिसल कर गिर पड़ा। ओहो, मेरा वो पांव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
0: तुम्हारी अकल का भी जवाब नहीं। छिपकली दाईं ओर पड़े या बाईं ओर, तुमने तो अकलमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा लिया। शकुन का भूत कहीं तुम्हें खा ही ना ले।
1: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
1: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ, मुझे याद आया, परसों मैं गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
0: बड़े आए घी का दिया चलाने वाले, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले हैं गाय के घी का दिया चलाने।
1: सरू,
0: वो क्या भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
1: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा जमुना।
0: क्यों जी, स्नान कर लिया? ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ। हाँ, और कॉफी भी तैयार है।
1: सरू
0: क्या है?
1: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
0: हाँ, तो क्या हुआ?
1: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
0: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
1: ओहो सरू,
0: वो मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो, कुछ नहीं होगा माँ को। अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
1: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली क्यों मेरे सामने से चली? इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है, मनहूस कहीं की।
4: पोस्टमैन, नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
1: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई, ये तार मेरा ही है ना, और एक बार देखो तो सही।
4: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
1: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत है भाई, मुझे जरा बता देना ये तार कहाँ से आया है।
4: घटक प्रभा से आया है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
1: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह? माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ मर गई। सरू, ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान, ये क्या क्या तूने, सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। हाय भगवान, मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
2: क्यों रो रहे हो?
1: आजा गोपी, आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
2: दादी चल बसी, बीबी दादी को तार आया है।
0: सच? हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी, और क्या लिख रहे हैं जी तार में?
1: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
0: वो देखो आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
1: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
5: क्या हुआ भाभी जी, शिनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
0: भाई साहब, उनके घर से तार आए हैं, उसमें उनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
5: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: हाँ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। नहीं किए,
5: रो मत शिनू, रो मत, धीरज रख, लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। ही हैज बीन प्रमोटेड एंड ट्रांसफर्ड एंड ऑल आर वेल इन। क्या भाभी जी, आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई?
0: क्यों?
5: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
0: क्या?
5: हाँ, प्रमोशन।
1: प्रमोशन?
5: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर। तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
0: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
1: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
5: ये क्या कर रहे हो शिनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो, मुंह धोकर आओ पहले। मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
1: रामू, ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
0: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हांकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
6: शकुन का शीनू, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थे अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई।

0: दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजें, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के

0: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
3: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, कभी कभी हमारी तलाश किसी किसी खास पर आकर रुक जाती है, तो इसी खूबसूरत एहसास से गुंथा हुआ था ये गीत, दिल को छू लेने वाला नगमा। हमने लिया था फिल्म जवानी दीवानी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहां कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है ना, होती है ना। तो चलिए, इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे।

0: ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है, मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास, या यूं कहें कि कसक, बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पांच बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

की उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

0: सेलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।
1: हनी हनी कर सया मून पे पहुंच गए जनवरी।

ना पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। अरे दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। देखो ना बेबी दिल के वायर की लेंथ को, छू कर देखो प्यार वाले करंट को।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

अपनी किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

ऐसा ही जरा अलग किरदार उन्होंने निभाया। फिल्म थी बधाई हो।

सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

पृथ्वी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनकी साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती रही।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था छोटी सी ये

चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी। हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।

0: मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होंठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसास मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

तुझे देखकर खिली दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ यूं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना कहेंगे।

बद्दूर भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर भाई बद्दूर।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे

0: लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अमृता।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय रात्रि के 11:52 हो चुके हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।